0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार के हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है। वाशरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने कल भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया। वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष ने मुक्का में महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग निर्माण के लिए लीज पर भूमि देने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। बॉम्बो अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिन की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की। सुनवाई में वकील रूबेन मोहंगा पिले ने सौजन जीनारेन से एक रिनियन दस्तावेज और गुलशन गोविंद की लुमोन में उपस्थिति को लेकर पूछताछ की, जिसे वकील ने चचेरे भाई होने के नाते अप्रमाणित बताया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय है। और विदेश में हुती लड़ाकों के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले से तेल आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने के कारण अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। मस्कोरिंस के दक्षिण पश्चिम पर पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और सेंट्रल प्लेटो तथा हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि तटवर्ती इलाकों पर अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी, अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ये मांग की जाती है कि विपरीत दिशा में हवा बहने के कारण ऊंचाई पर काम करते समय और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इन लहरों के कारण विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय निचले तटीय इलाकों में तटीय बाढ़ आ सकती है। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। सूर्योदय 6:06 पर और आज शाम 6:04 पर सूरज ढल जाएगा।
1: You're listening to RM3 Radio.

औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बि कमाल ही, कशफत दुजा बि जमाल ही, हसनत जमी व खुसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिने कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबल खैर प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये उम्मीद है बफजल रब्बे कायनात और ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा

0: अल्लाह ताला सलम के सदक़े आप खैर वाफियत से होंगे। सामाइन, जैसे कि मालूम है कि आज हम आपको जो बयान कोश गुजार करेंगे उसका उनवान है ताजदार बगदाद। मुकर्रर होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी दामद बरकत मालिया। ताजदार बगदाद का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप समाप्त कर सकेंगे। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक की चंद आयत मुबारक की तिलावत से करते हैं। बग़ैर अदब समाप्त करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم

0: अपनी तफसीर में इस आयत की तफसीर में लिखा, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम अय्यज़ु अलैहि शैउ लज़ी यनउतु उम्मतहु व यशक्कु अलैहा, हरीसुन अलैकुम अला हिदायतिकुम व वुसूलिन नफ़अ दुनियावी वल उख़रवी इलैकुम। यानी जो बात उम्मत को तकलीफ़ में डालती है, मुशक्क़त में डालती है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा ग्रान है और शाक है, और वो तुम्हारे हिदायत के लिए, तुम्हारे दुनियावी और उखरवी नफ़ा के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं और ख्वाहिशमंद हैं। उम्मत की नहायत दर्जे की खैरख्वाही और इंतहाई हमदर्दी का आलम यह था कि लोगों ने हक से मुंह मोड़ा, आपने उनको तौहीद और रिसालत की दावत दी, उन्होंने कबूल नहीं किया। इसका आपको बहुत ज़्यादा गम था, अफसोस था, रंज था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے پیچھے ان کے ایمان نہ لانے کے افسوس میں، غم میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लोगों के ईमान ना लाने की बिना पे उस शदीद अफसोस से और फ़िक्र से मना किया जिसमें हर वक़्त आप होते थे। चुनाचे फरमाया, फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरातिन इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन, सो आप उन पे गम खा खा के अपनी जान को, अपने आप को हलाकत में न डालें। बेशक अल्लाह जो कर रहा है वो अच्छी तरह जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए निहायत दर्जा हमदर्दी और उनसे निहायत दर्जा क़ुर्ब और शदीद ताल्लुक, स्ट्रॉन्ग लिंक और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी अहले ईमान को उनके जानों से भी ज़्यादा करीब है। अल्लामा इब्ने अतिया ने शायद की तफसीर में फरमाया कि काल बादुल उलमा अल आरिफीन وهو اولى بهم من انفسهم لان انفسهم تدعوهم الى الهلاك وهو يدعوهم الى النجات، کہ بعض علماء عارفین نے بتایا کہ آپ اہل ایمان کے لیے ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کی جانیں انہیں تباہی اور بربادی کی طرف بلاتی ہیں اور آپ ان کو نجات کی طرف بلاتے ہیں، دعوت نجات دیتے ہیں، उन्हें अल्लाह जल्ल मजदहू के अज़ाब से बचाते हैं। अल्लाह पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमें यही वालेआना हकीदत नसीब फरमाए और हुज़ूर के एहसानात को फरामोश न करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बलाग।
1: सामीन, अभी आप रबिस्तानी के मुबारक मौके पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साक़िर रज़वी दामद बरकातुहुम आलिया की ज़बानी रबिस्तानी के मुतल्लिक सिलसिलावार बयान समाअत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

0: हज़रत मुहियुद्दीन महबूब सुबहानी गौसुस सकलैन गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ताजदार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह। आइए सामीन, ताजदार बगदाद के उनवान से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी दामत बरकातुहुम अलैह की ज़बानी बयान समाअत कीजिए। ताजदार बगदाद।
1: सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का जायजा कर लो, पूरी जिंदगी का जायजा लो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत बताते हुए इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क इन अस्सिद्क बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना। रसूल आजम फरमाते हैं, सच को लाजिम पकड़ो, बेशक सच नेकी है और ये ऐसी नेकी है जो जन्नत तक ले जाती है।
2: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
1: जन्नत तक ले जाती है। चूंकि माँ जानती थी कि मेरा बेटा मेरे शिकम ही से वली बनकर के आया, इसके लिए ये जौहर इसके अंदर नुमाया तौर पर होना चाहिए। और वो जानती थी कि कुरान मुकद्दस में जिन लोगों की सोहबत से इस्तेफादे का हुक्म दिया गया और जिन लोगों के साथ होने का हुक्म दिया गया वो कोई और लोग नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए माँ ने इस चीज का इंतखाब किया था। आज की माँ इन चीजों का इंतखाब इसलिए नहीं कर पाती कि उसकी निगाहों में न कुरान है न साहिब कुरान है, बल्कि उसकी निगाहों में झूठ है, सीरियल है, गाने हैं, बाजे हैं, तमाशे हैं, बुराइयां हैं, लहवो लईब है। अच्छी तरीके से याद रखो, माँ बहुत अहमियत की हामिल होती है। गौसे पाक ने अपनी माँ से वादा किया था, माँ सच के अलावा कुछ न बोलूंगा, मेरी जबान से कभी झूठ न निकलेगा। और सुन लो, जब कोई मुसलमान अपनी जबान से झूठ बोलता है तो फरिश्ते 40 मील उससे दूर चले जाते हैं। और सरकार ने झूठ से बचने का हुक्म दिया, इसलिए कि झूठ ऐसा गुनाह है जो जहन्नम तक ले जाता है। इसलिए आज करोड़ों की मेहनत और करोड़ों की कमाई के बावजूद माल में बरकत नहीं, तंगदस्ती ही तंगदस्ती है। और वो सच्चाई के साथ की चंद रोटी के टुकड़े कितने अच्छे थे कि खत्म ही होने का नाम नहीं लेते थे। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखो, गौसे पाक ने अपने बेटे को, गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे को जो नसीहत फरमाई, उस नसीहत को हिर्दे जा बना लो, उस नसीहत को जिंदगी के अंदर अपना लो, सच्चाई के दामन को थाम लो। खुदा की कसम, सच बोलने वाला रुसवा नहीं होता, सच बोलने वाला जलील नहीं होता। अंबिया के औसाफ को जब कुरान ने बयान किया तो सिद्दीकन नबिया कहकर के पुकारा, एक नबी नहीं, हर नबी की खूबियों के अंदर कुरान ने सिद्दीकन नबिया कहकर पुकारा। अल्लाह अकबर, परवरदिगार के जितने भी अंबिया तशरीफ लाए सब सच्चे बनकर के तशरीफ लाए, सदाकत की तालीम दी। और यही वजह है कि बादशाह नजाशी के के अंदर अजमत इस्लाम कब बैठी, जब हजरत जाफर तैयार से पूछा गया कि जिस नबी की नबी पर तुमने ईमान लाए हो तुम उस नबी की खूबियां बयान करो, वो क्या तालीम देते हैं, तो हजरत जाफर तैयार ने फरमाया था, ये नबी सच्चाई की तालीम देता है, झूठ से बचने की तालीम देते हैं, ये नबी हमें फिस्क व फुजूर से बचने की तालीम देते हैं, माँ बाप के एहतराम की तालीम देते हैं, जना और बदकारियों से बचने की तालीम देते हैं। आप जानते हैं जब इन अच्छी तालीम के हवाले से नज्जाशी बादशाह ने सुना तो उसके दिल में रसूल आजम की अजमत पैदा हो गई। ऐ रसूल गिरामी वकार के दीवानों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई के लिए यह जरूरी है कि वो किसी और के फरमान में फायदा तलाश न करे। अगर तलाश करना है तो रसूल आजम के हुक्म पर अमल करो, नतीजा हुजूर ने जो कह दिया वही जाहिर होगा और उसका फायदा यहां भी नजर आएगा, मैशर में भी इंशाअल्लाह नजर आएगा। तो माँ ने क्या नसीहत की, सच के दामन को थामने की। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि या गौसे सकलैन, ये बताइए, कुर्बे खुदा की दौलत

0: अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा, तज़किया कल्ब, इन सारी चीजों के लिए कौन सा अमल हमारे लिए बेहतर है आप बताएं। दो चीजों की तालीम दी सैयदना गौसे पाक ने, इरशाद फरमाया अकले हलाल सिदके मकाल, हलाल खाना सच बोलना, इन दो चीजों को बंदा इख्तियार कर ले तो बंदे की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा।
1: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
0: इसलिए कि हराम की रोजी की बुनियाद पर न सजदे कबूल होते हैं, न रोजे कबूल होते हैं, न इबादतें कबूल होती हैं, और हलाल की रोजी यह कितनी अहमियत रखती है कि एक सहाबी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, दस्ते सवाल दराज फरमाया, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी झोली भर दी। कुछ दिन गुजरे, फिर वो तशरीफ लाए, फिर उन्होंने दस्ते सवाल दराज किया, सरकार ने फिर उनकी झोली भर दी। ये मुसलसल सिलसिला जारी रहा। एक मरतबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब वो पहुंचे और उन्होंने दस्ते सवाल फैलाया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास कोई चीज है? उन्होंने बताया कि उनके पास प्याला है। सरकार फरमाए ले आओ। उस प्याले को सरकार ने नीलाम किया, प्याला बिक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले की रकम उन्हें अता फरमाई और इरशाद फरमाया जाओ इससे कुल्हाड़ी खरीदो और जाकर के जंगल के अंदर लकड़ियां काटो और उसे फरोख्त करो। वो गए, 15 रोज के बाद तशरीफ लाए बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो हाथों में छाले पड़ चुके थे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कैसे गुजर रही है? अर्ज करते हुजूर पहले से बेहतर है, अब मेहनत से कमा कर खाता हूं, उससे राहत मिलती है, लेकिन मेहनत की आदत न थी, आका मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सरकार ने वो हाथ लिया और उस हाथ को अपने हाथ में लेकर हुजूर ने चूम लिया।
1: सुभान अल्लाह।
0: और इरशाद फरमाया कि हलाल कमाई के लिए इंसान जो मेहनत करता है और उस मेहनत में जो तकलीफ होती है उन तकलीफ से अल्लाह अज़्ज़ वजल उन गुनाहों को माफ फरमा देता है जो गुनाह न नमाज से माफ होते हैं न रोजे से माफ होते हैं।
1: सुभान अल्लाह सुभान।
0: ये है हलाल की कमाई की बरकत, ये है हलाल की कमाई का सिला। लेकिन आज इजी मनी का एक शौक, जल्दी से सरमाएदार बनने का शौक इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। हलाल के खाने का कितना एहतमाम अल्लाह के औलिया करते हैं। हजरत राबिया अदविया रजी अल्लाह तआला अन्हा की दावत हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। दस्तरखान पर जब गोश्त रखा गया तो हजरत राबिया अदविया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गोश्त को देखा तो फरमाया भाई हसन ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। घबरा गए हजरत हसन बसरी। माई राबिया क्या हसन की कमाई में भी तुम्हें शुबा है? कहा हसन तहकीक कर लो। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खादिम को बुलाया, इरशाद फरमाया गोश्त कहां से लाए? फलां कसाब के पास, उससे लेकर के आए। तशरीफ ले गए कसाब के पास, तूने सही तरह से ज़बह किया था जानवर? कहा बिल्कुल। वो भी बरगुजीदा बंदे थे अल्लाह के जो कसाब थे। कहा जानवर ठीक ठाक था, कोई ऐब या नक्स तो उसमें नहीं था? कहा नहीं बिल्कुल, मैंने देख दाख के सब कुछ किया। कहा जानवर कहां से खरीदा था? तो बताया फलां साहब के पास से। चलो उसके पास गए। जानवर तुम्हारा ही था? कहा हां। इरशाद फरमाते हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि कोई उसमें गड़बड़ी, तुम्हारे पास जो रकम थी उसमें कोई कमी या कोई खराबी कोई चीज तो नहीं थी? कहा नहीं। बोले आप ये सवाल क्यों पूछते हो? तो हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे जानवर का गोश्त जब राबे आदविया रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके दस्तरखान

0: कान पर जब हमने रखा तो वो गोश्त खाने से अपने हाथ को खींच ली और उन्होंने कहा कि ये गोश्त मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैं तश्वीश में हूं और तफ्तीश कर रहा हूं। तब उस शख्स ने कहा, हो सकता है कि ये माए राबिया के लिए गोश्त न हो, उनके लिए सही न हो। कहा, क्यों, क्या बात है? कहा, हुजूर, ऐसा हुआ कि ये पड़ोस का जो खेत है ना, जो जानवर मैंने उस कसाब को बेचा, एक मर्तबा ये जानवर चरते चरते बाजू वाले के खेत में चला गया था और कुछ घास उसकी उसने खा ली थी। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि देखो, यही वजह है कि राबिया ने इस गोश्त को नहीं खाया, ये अल्लाह वाली थी, ऐसे गोश्त से भी अपने हाथ को खींच लेती थी और वो गोश्त को देखकर जानवर की असलियत जान लेती थी। अगर इसमें किसी को शुबा हो तो शुबा करने की जरूरत नहीं। हुजूर ने फरमाया, इत्तकु बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, मोमिन की फिरासत से डरो, बचो कि वो अपनी आंख से नहीं अल्लाह के नूर से देखा करता। उनके सामने जो असरार रुमूज खुलते थे, उनके इस्तकबाल के लिए जो काबा चला जाता था, उनकी इबादत और रियाजत के जो डंके पूरी दुनिया में बजते थे, उनकी जबान से निकली हुई दुआओं को अल्लाह कबूल कर लेता था, उनकी वजह से उम्मत की बिगड़ी हुई तकदीर सवर जाती थी, खुदा की कसम उसकी वजूहात के अंदर दो सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अकल हलाल और सिद्क मकाल। आज हमारे यहां क्या है, हम जरा भी ख्याल नहीं करते खाने पीने के सिलसिले में, कोई ख्याल नहीं, न माल के सिलसिले में। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इजी माल के लिए, इजी मनी के लिए गलत रास्ते को इख्तियार मत करो। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला अन्हु ने हलाल खाने का हुक्म अता फरमाया, हमें उनकी तालीमात पर अमल करना है, उनके फरामीन पर अमल करना है। और अच्छी तरीके से याद रखो, अगर कोई ये कहता हो कि गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत काम नहीं आएगी, उन्हें ये आयत पढ़कर सुना दो कि अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, अल अखिल्ला यौम इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुवुन इल्लल मुत्तकीन, कयामत में जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन। और सैयदना गौसे पाक तो सिर्फ मुत्तकी ही नहीं थे बल्कि आला हजरत कहते हैं, गौसे आजम इमामुत तुका वन नका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक की मोहब्बत को दिल में बिठाओ, उनकी अकीदत को दिल में बिठाओ, उनके नाम की फातिहा दिलवाओ, उनकी याद अपने जिंदगी अपने दिल के अंदर बसाओ, उनके बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अगर वो चाहें तो हमारा ये मजमा भी उनसे पोशीदा नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने फरमाया है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राय का दाना। और गौसे पाक का अल्लाह की बारगाह में कितना ऊंचा मकाम है, कितने आला मकाम पर वो फाइज हैं, और अल्लाह गौसे पाक की बातों को नहीं टालता, और गौसे पाक की वजह से अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाता है, और गौसे पाक की सिफारिश को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल फरमाता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, उनकी वजह से परेशानियों को दूर करता है। ये अकीदा सैयदना इमाम इश्क़ मोहब्बत का था, यही वजह है कि बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं तो इमाम इश्क़ मोहब्बत अज़ीम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान न कंज़ुल ईमान पेश कर रहे हैं, न फतावा रज़विया शरीफ पेश कर रहे हैं, न और कोई चीज पेश कर रहे हैं, बल्कि अर्ज करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे मशायख हमारे उलमा सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए।
1: सामीन, ताजदार बगदाद के उन्वान से अभी आप नूरानी बयान का दूसरा और आखिरी हिस्सा समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

चंद अकवाल जनी समात कीजिए। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है। किसी को हकीर और कमजोर न समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है।

एक सहाबी रदल्लाहु तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एमपीसी च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा। हॅपी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

शक्ति। मंगलवार 15 सितंबर रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुड़ चुके हैं और गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों को। भगवान गणेश जो है आप सबका कल्याण करें, भगवान गणेश जो है आपके जीवन से सभी विघ्नों को दूर करें और भगवान गणेश की अपार कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व अपने आप में बहुत ही पवित्र है, पावन है और साथ ही लोकप्रिय भी है। इस पर्व को भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो चलिए भगवान गणेश का नाम लेते हुए आज के भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी इस पावन पर्व की यदि हम बात करें तो भगवान गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान, सफलता और विघ्नों को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्त जो है अपने घरों में एवं सार्वजनिक स्थलों पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। पूजा, आरती, भजन, कीर्तन ये सब करते हुए भगवान गणेश का हृदय से स्वागत किया जाता है। साथ में पूजा अर्चना होती है और जो है ऐसे भक्त जो है भगवान गणेश से हर कोई जीवन में सुख की कामना करता है, शांति की कामना करता है, समृद्धि की कामना करता है। और भगवान गणेश जो है अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। और ख़ासकर गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की यदि हम बात करें तो ये पर्व अपने आप में एक हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। और भगवान गणेश जो प्रथम पूजनीय है, कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है भगवान गणेश की पूजा अर्चना से, उनके नाम से ही आरम्भ होता है। तो भगवान गणेश जो है सबका कल्याण करे, ऐसी कामना हम करते हैं।

श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस चतुर्थी इस पावन पर्व की यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो इस पर्व का बड़ा ही महत्व है ही, साथ ही ये पर्व हमें अपनी परंपरा, हमारे धर्म और हमारी आस्था से जोड़ता है। इस अवसर पर लोग घर को सजाते हैं, भगवान गणेश का हृदय से स्वागत करते हैं, भगवान गणेश का जो है प्रसाद उन्हें बनाकर उन्हें अर्पित करते हैं, मोदक और लड्डू उन्हें चढ़ाए जाते हैं। पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए इस पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ छोटा बड़ा हर कोई मनाता है।

श्रोताओं, रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी जो है इस पावन पर्व को, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को मना रहे हैं, इसकी मंगल कामनाएं आप सभी को। गणेश चतुर्थी हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। जी हाँ, इस पर्व के दौरान सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही सामूहिक रूप में जब पूजा प्रार्थनाएं की जाती हैं तो ये हमारे बीच हमारी एकता को दर्शाता है, ये हमारे बीच भाईचारे की भावना को दर्शाता है, ये हमारे बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास को दर्शाता है। तो कोई भी पर्व जब हम ऐसे एक साथ मिलकर मनाते हैं तो उस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है।

0: शक्ति। श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के हम अंत तक आ गए हैं। और गणेश चतुर्थी जो पावन पर्व है, ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारे नैतिक मूल्यों को ये उजागर करता है। ये हम में प्रेम, सद्भावना, सेवा और अनुशासन के गुणों को भी जो है प्रेरित करता है। कहीं ना कहीं ये पर्व हमें एक साथ लाता है और इस पर्व को हम सभी एक साथ मिलकर हम हमेशा मनाएं और भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इस अंतिम प्रस्तुति के साथ हम आपसे विदा लेंगे। पुनः आप सबसे भेंट होगी, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सभी को शुभ दिन। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज गणपति विसर्जन की विधि संपन्न की जा रही है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य और जीवन की नश्वरता का संदेश देता है। जिस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर वस्तु अंततः सर्वोच्च चेतना में समा जाती है। वाशिरी में आयोजित गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया। अवसर पर प्रधानमंत्री ने आपसी भाईचारे, सभी धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए दूरदर्शी सोच के महत्व पर जोर दिया। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजा पैकेज को लेकर बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउतीम और कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि बैठक में किसी समझौते पर सहमति नहीं बनती है तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के समक्ष भेजा जा सकता है। इस बीच कंपनी के बंद होने की संभावित तारीख 20 नवंबर तय की गई है। बाबू अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिनों की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की। वकील मोहंगा पिल्ले ने संबंधित दस्तावेज और दावे के को अप्रमाणित बताते हुए उस पर आपत्ति जताई। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और विदेश में कर्नाटक में सोमवार देर रात एक घर में रेफ्रिजरेटर फटने से आग लग गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सेंट जोसेफ स्ट्रीट तेरूज में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती भगन, जो मैडम साधु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर सेंट जोसेफ स्ट्रीट तेरूज से उठाकर सिपाही बरेली वाली दिपकत की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विश्वानी चौधरी, पैदाशी नाम लट्टू और जो संगीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर इसी दो रोज की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
5: You're listening to RM3 Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, भगवान गणेश के नाम से जो है आज के सुहाना सफर प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की हार्दिक मंगल कामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को, हमारे सभी लिसनर्स को जो आज गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है मना रहे हैं। भगवान गणेश जो है विघ्नों के हर्ता है, जीवन के सभी विघ्नों को दूर करते हैं, जीवन में हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और साथ ही भगवान गणेश जो है सबका कल्याण करते हैं। और कहते हैं ना कि बाप्पा आते हैं ढेर सारी खुशियां लेकर और जाते जाते जितने भी दुख है, जितने भी परेशानियां हैं अपने साथ लेकर चले जाते हैं और हमारे जीवन को सुखी कर जाते हैं। तो चलिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा रहे। सुहाना सफर ये प्रोग्राम है, आप सभी श्रोताओं का हम दिल से वेलकम करते हैं और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास होगा और ऐसे खास दिन में हम भी यहाँ पर आ चुके हैं और आज तो 12 बजे से 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, बप्पा आप सबका कल्याण करें, बप्पा आप सबका मंगल करें और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रोग्राम की शानदार शुरुआत करते हैं।

0: ना सफर।
1: जी हाँ, गणपति बप्पा जी का आगमन है ही ऐसा कि आते ही सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है और हमारी जो लाइफ है वो पॉजिटिविटी से भर जाती है। तो चलिए, बप्पा सबका मंगल करे, बप्पा सबका कल्याण करे। और यहाँ पर अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4028070 है नंबर हमारा आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, और साथ ही हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250620 पर। और चलिए, यहाँ पर खूबसूरत गानों का ये जो सफ़र है इसे हम आगे ले जाते हैं, और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे टिकटॉक पेज पर हम लाइव भी हो। तो चलिए, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, ये दोपहर का वक्त है और आज तो छुट्टी का दिन भी है। बहुत से लोग तो ऐसे ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना में लगे हुए होंगे। बहुत से लोगों ने, भक्तों ने कल स्थापना की, और आज बहुत से भक्त जो है भगवान गणेश के विसर्जन की तैयारियों में लगे होंगे। और माना कि बप्पा का आगमन ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन जब बप्पा के जाने की बारी आती है तो हर कोई जो है भावुक हो जाता है। लेकिन ये भावनाएं हैं, बप्पा जाएंगे तभी ना बप्पा लौट कर आएंगे। चलिए, अभी के लिए पुराने गानों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। सरगम फिल्म का ये अगला तराना आप सभी के नाम हम करते हैं।
2: You're listening to RM3 Radio, मन

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर।
2: यकीनन हम आपको अकेले कैसे छोड़ दें, यहाँ पर हम तो आते ही हैं आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और आज तो 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और सुहाना सफर के इस सफर को आप भी इंजॉय कर रहे हैं, हमें जानकर बड़ी खुशी हो रही है। और चलिए, गाने तराने होते ही ऐसे हैं ना जो हमारे मूड को ठीक कर दे, हमारे जो है माइंडसेट को ठीक कर दे, और अगर कोई परेशानी है वो भी इन गानों को सुनते सुनते दूर हो जाती है। और आज का तो दिन अपने आप में इतना पॉजिटिव है कि कोई परेशानी किसी को छू ही नहीं पा रही है ना, क्योंकि भगवान गणेश का आशीर्वाद जो है यहाँ पर। हेलो सुमी जी, हम भी आपके साथ साथ हैं बिल्कुल। माधुरी जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है। माधुरी जी, गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं आपको भी, पूरे परिवार को, और यहाँ पर परी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए, यहाँ पर खूबसूरत गानों का ये सिलसिला सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आगे ले जाते हैं।
3: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
4: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी हाँ, आपकी दिल की आवाज़ भी हम तक पहुंच रही है, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बहुत बहुत शुक्रिया। छुट्टी का दिन है और सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोपहर का वक्त है, लंच करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप सभी को हम बोनापेची कहेंगे। और इस समय वैंकूवर कनाडा से किरण पुरी जी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी को गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, गानों को इन्जॉय कर रहे हैं। अभी तक जितने भी गाने हमने चलाए इन्हें बड़ा अच्छा लगा। हम बिल्कुल ठीक है किरण जी, वी होप कि आप भी बिल्कुल ठीक है। और चलिए अगला गाना जाता है सभी के नाम आपकी ओर से, किरण जी, किरणपुरी जी आपकी ओर से, जी जी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी, कलाराम, कारीगर, सभी कनाडा से हमेशा हमारा साथ देते हैं और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर में देखते ही देखते हमारा फर्स्ट आवर खत्म होने को चला। इन खूबसूरत गानों के साथ टाइम का अंदाजा ही नहीं होता है ना। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे, ऐसे तो आपको पता ही है सुहाना सफर इस प्रोग्राम में पुराने गाने चलते हैं, लेकिन आज गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व है तो भगवान गणेश पर आधारित कुछ गाने तो हम चला ही रहे हैं। आजकल एक नई सिनेमा रिलीज हुई है हनुमान अंश, इसके भी गाने बड़े ही दिल को छू लेने वाले हैं। तो ये जो गाना अभी आप सुन रहे थे माँ पार्वती और शिव पर, ये उसी फिल्म का है। और भगवान गणेश की बात करें, जब सृष्टि की परिक्रमा करने की बात की तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की, ये कहते हुए कि वही तो पूरा संसार है और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे माता पिता ही तो है जो हमें जीवन देते हैं और जो है हमारे लिए इतना संघर्ष करते हैं। चलिए अभी के लिए इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार मिलते हैं हम आपसे सुहाना सफर के सेकेंड आवर में।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। देश में गणेश चतुर्थी पर्व के जश्न का माहौल बना हुआ है। सभाओं और परिवारों के यहाँ कल गणेश भगवान की मूर्तियों की स्थापना विधि चली और रात्रि जागरण हुआ, सुबह उत्तर पूजा चली और दोपहर से टोलियाँ विसर्जन के लिए निकल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आज शाम विसर्जन अवलोन में किया जाएगा। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज़्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए। ऐसी स्थितियों में परिवार की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेटो के लड़ाकू विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में ड्रोन प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। अभी तक इसके स्रोतों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने देश की जनता से सतर्कता बरतने की मांग की है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। सेंट जोसेफ स्ट्रीट टेरोज में 88 साल की 88 years old श्रीमती धनवंती बगन जो मैडम साधु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान सेंट जोसेफ स्ट्रीट त्यागूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोले वालिदे पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:30 PM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 63 साल की 63 years old श्रीमती विश्वानी चौधरी पैदाशी नाम लतू, जो संगीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी दो रोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
4: On NBC Play, NBC Radio.tv.
5: You're listening to RM3 Radio Man.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: चिरे सुहाना सफर का ये दूसरा घंटा है और यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का शानदार स्वागत हम करते हैं। सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं, छुट्टी का दिन है ऐसे में हमारे साथ भी कनेक्टेड है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों को। भगवान गणेश जो है विघ्नों के हर्ता है, आपके जीवन से सभी विघ्नों को दूर करेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भरेंगे। और चलिए यहाँ पर मानिता जी इस समय हमारे साथ जुड़ी है। जय श्री गणेश, आपको भी गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं, आपको भी आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कनेक्टेड है। अगला गाना जाता है सेंट जूलिया विलास के, आपके पूरे परिवार के नाम, खासकर आपके मामा सुमंती है, बहनें हैं आरती, सचिता, बबीता, रेखा, भाभी है उषा, भाई है सत्यम, सभी सुनने वालों के नाम और आपके लिए भी ये खूबसूरत सा गाना हम चलाएंगे। और भूलिएगा नहीं 4028070 है नंबर हमारा, साथ ही आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं 5250620000 पर। और आपको एक बार फिर याद दिला दे, और आज जो है हमारा और आपका ये जो सफ़र है, ये जो साथ है, रहने वाला है दोपहर के 3 बजे तक।

0: जी हाँ, कब छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है और कब ये बातें हमारे रिश्तों में दरार लेकर आती है पता नहीं नहीं चलता ना। तो इसलिए अपने रिश्तों को सुधारने का एक भी मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए और रिश्तों को हमेशा बनाए रखना चाहिए।
1: सुहाना सफर,
0: चलिए यह है सुहाना सफर और इस सफर में हम और आप जुड़े हुए हैं, गानों का कारवां जुड़ा हुआ है और अगले गाने की ओर अब बढ़ते हैं। साजन फिल्म का ये जो तराना है रिवेजपोस्ट से देवानंद जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। गाना जाता है इनके ओर से सभी सी पौसाद परिवार के नाम जो इस समय हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं। तो देवानंद जी, ये गाना आपके नाम, लता जी, रफ़ी साहब की आवाज़ों में और आपकी ओर से आपके पूरे परिवार के लिए।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चलिए इसी गाने के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय परी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, परी का मैसेज आया है, तो चलिए परी ये गाना आपके लिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: यस तेरे हम सफ़र गीत है तेरे, यकीनन ये गीत ये संगीत ही तो हमारे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं और इनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है इन या सुहाना सफ़र रेडियो मनोरंजन पर, और अभी के लिए ये खूबसूरत सा तराना यहाँ पर चल पड़ा है मीत मेरे मन के, इस फिल्म से लिया गया।

0: खाना सफर।
1: जी हाँ, आप बुलाए और हम ना आए ऐसा हो सकता है भला? नहीं ना, इसलिए तो जब भी मौका मिलता है हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका साथ देने के लिए ऑन रेडियो मनोरंजन। छुट्टी का दिन, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से बीत रहा होगा आप सभी के लिए। और छुट्टी यानी कि अपनों के साथ टाइम बिताना, थोड़ा सा आराम करना। आज तो मौसम भी काफ़ी, इस ओर की अगर हम बात करें तो हवा काफ़ी तेज़ है, हल्की हल्की कभी बरसात हो जा रही है और ठंड इतनी है कि क्या कहें। तो बस अपने इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम तो है ही यहाँ पर ऑन रेडियो मनोरंजन। दिस इज़ योर सुहाना सफ़र। और इस अगला तराना जो है इसके साथ हम बढ़ेंगे 2 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार मिलेंगे हम आपसे सुहाना सफ़र के 3rd आवर में। तो साथ देते रहिए हमारा, और अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई डेडिकेशन है, ऑफ कोर्स यू कैन कॉल अस ऑन 402-8070। साथ ही यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर।

फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे

0: your kind of music all day, all night, right here on your Wild Eyes.
1: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अदिति से, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। देश में गणेश चतुर्थी पर्व के जश्न का माहौल बना हुआ है। सभाओं और परिवारों के यहाँ कल गणेश भगवान की मूर्तियों की स्थापना विधि चली और रात्रि जागरण हुआ। सुबह उत्तर पूजा चली और दोपहर से टोलियाँ विसर्जन के लिए निकल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आज शाम विसर्जन आवालौन में किया जाएगा। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज़्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए हैं। ऐसी स्थितियों में परिवारों की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेटो के लड़ाकू विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। अभी तक इसके स्रोतों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने देश की जनता से सतर्कता बरतने की मांग की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: सफर।
1: चलिए आज है मंगलवार 15 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए 2:03 होने को है। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स का वेलकम है ऑन रेडियो मनोरंजन एंड दिस इज योर सुहाना सफर का थर्ड आवर। जी हाँ, छुट्टी का दिन है तो एक घंटा स्पेशल आप लोगों के साथ तो बनता ही है ना। तो चलिए और एक घंटे का जो ये जो साथ रहने वाला है इससे और भी मैक्सिमाइज करने की हम कोशिश करते हैं। खूबसूरत गाने तराने आपके लिए चलाकर और गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व सभी मिलकर मना रहे हैं तो इस पर्व की ढेर शुभकामनाएं आप सभी को। और चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ, हमसे बढ़कर कौन फिल्म से लिया गया, इस खूबसूरत गाने के साथ इस थर्ड आवर की शुरुआत करते हैं।
2: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
3: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, प्यार तो हो ही जाता है इन गानों को सुनते सुनते, और कहीं ना कहीं ये जो प्यार है ज़िंदगी के हर एक पल को खूबसूरत बना देता है। और हम बगैर हमारे इमोशंस के, बगैर हमारे इन फीलिंग्स के कुछ भी नहीं, तो बस जो भी करे पूरे इमोशंस के साथ, पूरे फीलिंग्स के साथ करे। और यहाँ पर चलिए, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। रॉक गंगाराम जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दरिंदा फिल्म का जो अगला तराना है आपके नाम जाता है, आपकी ओर से सभी गंगाराम परिवार के लिए दरिंदा फिल्म का ये तराना मुकेश साहब की आवाज़ में।

खाना सफर यकीनन हमारे आपकी मुलाकात चलिए हो रही है ऑन रेडियो मनोरंजन. दिस इज योर थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफर और इस समय प्लेंदे पापाई से गोविंद जी हमारा साथ दे रहे हैं. धनवान फिल्म के इस अगले गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं. ये गाना लता जी और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ों में गाना जाता है गोविंद जी आपके लिए. और यहाँ पर इसी गाने को हम डेडिकेट करेंगे ज्योति जी आपके नाम, शात्र बनारस से हमारा साथ दे रही हैं. साथ में वी हैव आशनी, रेखा, सुरेखा, सभी मदब परिवार और सभी हमारे लवली लिसनर्स को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रही हैं.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: तो सुहाना सफर में देखते ही देखते दोपहर के पौने तीन बजने को है और यहाँ पर अगला जो तराना है वक्त फिल्म का गीत है। हरीश जी बोबासा से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि आने वाले दो दिनों में ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और आज ही से जो है हम

अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस अगले गाने को आपके लिए चलाएंगे हरीश जी, जो आपके लिए रिक्वेस्ट आई है। हरीश जी, अगला गाना आपके नाम, आपकी प्यारी वाइफ इंदिरा के नाम, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, फिर चाहे रेडियो मनोरंजन हो या रेडियो मॉरिशस हो। चलिए अभी के लिए ये तराना मनाडे साहब के आवाज़ में उन सब के लिए भी जो इस गाने के फ़ैन हैं।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: सुहाना सफर
1: चले। सुहाना सफर का ये जो 3 घंटों का सफर रहा, देखते ही देखते खत्म होने को चला। और आज तो गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व सभी मना रहे हैं, तो सभी भक्तों को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। गणपति बाप्पा आते तो है ढेर सारी खुशियां और अपना आशीर्वाद लेकर, और जाते जाते सभी के दुखों को, सभी की परेशानियों को लेकर जाते हैं और सभी के जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सब पर यूं ही हमेशा बरसता रहे। और जाते जाते ये स्पेशल गाना आप सभी भगवान गणेश के भक्तों के नाम, और भगवान जो है सबका कल्याण करे। और इसी के साथ आज का हमारा जो सुहाना

पर का प्रोग्राम रहा ये खत्म होने को चला आप सभी ने इतने प्यार से हमारा आज भी साथ दिया इसके लिए थैंक यू सो सो मच 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और 3 से 4 बजे के बीच आप सुन पाएंगे म्यूजिकल प्रोग्राम तो ज़रूर जुड़े रहिएगा रेडियो मनोरंजन पर हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया

0: नमस्कार नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में हुई बारिश के बावजूद जलाशयों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसके लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी के दूसरे स्रोतों के विकल्प मजबूत कर रही है। मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स के इस्तेमाल से नदियों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है, साथ ही भूमिगत जलाशयों से पानी निकालने का काम भी तेज किया जा रहा है। मकसद है पानी के भंडार सुरक्षित रखना और दिसंबर महीने तक देश में पानी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना। CWA के अनुसार अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो पाबंदियां और सख्त की जाएंगी। और आस्था भक्ति तथा उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बाप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच विसर्जन विधि संपन्न की जा रही है। यही संदेश देता है कि बाप्पा का स्वरूप भले ही जल में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य भक्ति और शक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए। ऐसी स्थितियों में परिवार की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरानी सुरक्षा चीफ ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इनकार किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी शांति वार्ता के लिए तत्पर नहीं दिख रहे। इस अनिश्चितता के बीच आज फिर से हॉर्मुज जलमार्ग में एक जहाज पर हमला हुआ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शुभ समाचार। रॉयल रोड बॉश एआई में 61 साल के 61 यजोर श्री अजयदेव सिंह गोपाला जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बॉश एआई चाय के कारखाने में पूर्व सदार का काम करते थे। इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉशेरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो आफ्टरनून। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती आदुंकली पैदाशी नाम गजाधर, जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे लाशा पैलादौंत एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप

0: मंगलवार 15 सितंबर रेडियो मनोरंजन पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक आपका साथ देने के लिए हम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं आप सभी को। भगवान गणेश जो है सभी विघ्नों को दूर करते हैं, सबका कल्याण करते हैं और गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है इसकी ढेरों शुभकामनाएँ आप सभी को। भगवान गणेश आते हैं ढेर सारी खुशियाँ लेकर और जाते हैं हमारे सारे दुखों को लेकर, सभी विघ्नों को लेकर, और हमें एक सुखी जीवन देकर जाते हैं। तो चलिए गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व आशा करते हैं कि आप सभी के लिए बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा। तो भगवान गणेश का नाम लेते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ

तो डियर लिसनर्स, आप रेडियो मनोरंजन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस स्पेशल म्यूजिकल प्रोग्राम में। गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है, आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी पर्व होता है, जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो उस फेस्टिवल की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है, उस पर्व का जो महत्व है और भी बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं यह हमारे लिए भी एक अवसर होता है अपने बच्चों को अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में बताने का, उन्हें समझाने का। और जब घर के बड़े बुज़ुर्ग, घर के बच्चे सभी मिलकर एक साथ जब कोई भी फेस्टिवल को, कोई भी स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें खुशियाँ तो बढ़ती ही है और साथ में फैमिली में जो वैल्यूज़ है वो भी बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए अभी के लिए एक और तराना हो जाए, भगवान गणेश का नाम लेते हुए प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

तो डियर लिसनर्स, इस समय रेडियो मनोरंजन पर आप जुड़े हुए हैं हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ। गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है, सभी मिलकर मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ

इस पर्व में छोटे बड़े हर कोई भाग लेता है। और किसी भी पर्व की बात करे तो खान पान होता है, इसमें पूजा प्रार्थनाएं होती है, सभी का मिलना जुलना होता है, लोग अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जुड़कर अपने पर्वों को मनाते हैं, हर एक विशेष पर्व के लिए विशेष पोशाक पहने जाते हैं। और जब ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पर्वों को मनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे भीतर हमारे प्रेम को दर्शाता है, ये हमारे भीतर छुपे हमारे संस्कृति के प्रति जो सम्मान है उसे दर्शाता है। और कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देता है कि हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना कितना आवश्यक होता है ना।

तो चलिए रेडियो मनोरंजन पर आपका साथ हमें मिल रहा है और इस वक्त अगर हम बात करें, कल भगवान गणेश की स्थापना हुई और आज बहुत से लोग भगवान गणेश के विसर्जन के लिए नदियों की ओर बढ़ रहे हैं या पहुंच चुके हैं समुद्र के तट पर, फिर वहां जाकर भगवान की आरती होती है और बड़े ही भावुक हृदय से भगवान गणेश को हम विदा करते हैं, क्योंकि जितने प्रेम से उनका स्वागत करते हैं उनको विदा करना उतना ही दुखदायी होता है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जाएंगे तभी ना लौट कर आएंगे। तो चलिए हंसते मुस्कुराते हम भगवान गणेश का नाम लेते हुए कार्यक्रम में इस अगले गीत को जोड़ते हैं।

0: तो दोस्तों ये विशेष प्रोग्राम ये स्पेशल म्यूजिकल प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर आपने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। हम तो यही कहेंगे गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया। तो चलिए इसी नारे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान गणेश आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपके जीवन से सभी विघ्नों को दूर करे। गणपति बाप्पा मोरिया। सुमिता को अनुमति दें। नमस्कार आप सभी को।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अदिति से नमस्कार।
1: नमस्कार दिव्या, श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में हुई बारिश के बावजूद जलाशयों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसके लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी के दूसरे स्रोतों के विकल्प मजबूत कर रही है। मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स के इस्तेमाल से नदियों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है, साथ ही भूमिगत जलाशयों से पानी निकालने का काम भी

0: तेज किया जा रहा है। मकसद है पानी के भंडार सुरक्षित रखना और दिसंबर महीने तक देश में पानी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना। CWA के अनुसार अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो पाबंदियां और सख्त की जाएंगी। आस्था भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच विसर्जन किया जा रहा है। यही संदेश ये देता है कि बप्पा का स्वरूप भले ही पानी में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य भक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर विसर्जन समारोह का आयोजन आवालों में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरानी सुरक्षा चीफ ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इनकार किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी शांति वार्ता के लिए तत्पर नहीं दिख रहे। इस अनिश्चितता के बीच आज फिर से हॉर्मुज जलमार्ग में एक जहाज पर हमला हुआ है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे पंचानवे दशमलव छः अठानवे दशमलव दो आप सुन रहे हैं और M3

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: RM3 Radio.
1: आपके सितारे
2: जो मंगलवार का दिन है 15 सितंबर 2026 ऑफ कोर्स ट्यूसडे है 15th ऑफ सितंबर और आज कितना खास दिन है मेरे दोस्त कितने गणेश भक्त जा रहे हैं गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से हमारे मन से आपको कहेंगे गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं बप्पा की आशीर्वाद बप्पा की कृपा हम सब पर बनी रहे यही प्रार्थना है हमारी बस जितने लोग वो जा रहे हैं समुद्र तट की ओर या फिर नदी की ओर तालाबों की ओर आप सभी को कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया जहाँ पावन दिन है और ऐसे पावन दिन में बहुत से प्रोग्राम्स हुए जिनमें बप्पा मोरिया के भजन आपने सुने मगर अब वक्त हो चला है आपके सितारे प्रोग्राम और हर मंगलवार की तरह आज भी 4 बजे से 6 बजे तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है आपके सितारे और आज खास तौर पर मैं आई हूँ देविना आप सबों का साथ देने के लिए सो सादर प्रणाम नमस्कार गुड आफ्टरनून आदाब आप सभी को और जितने लोग घर पर होंगे खाना बना रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं आज है पब्लिक हॉलीडे मेरे दोस्त सो होप कि आपका जो दिन है जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं बस उनका दिन जो है हमेशा अच्छा ही बीत रहा होगा और साथ में जितने लोग यहाँ पर है घर पर तो बस आपको हमारा प्यार भरा दिल से स्वागत कर रहे हैं आप सभी का तो बस ये जो प्रोग्राम है आप किसी

0: तारे इसमें हम किसी सितारे की बात करते हैं हाँ जी
1: आपके सितारे
0: और आज की का जो सितारा है कौन है आपने सुना दिल में तुझे बिठा के ये हम आपको दिल में बिठाते हैं इसे चले आए हैं आज के लिए शाम के इस वक्त 6 बजे तक MBC और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर शुरू हो चुका है आपका अपना सितारों भरा प्रोग्राम और आज की जो शाम है समर्पित है एक ऐसी अदाकारा के नाम जिन्होंने सिर्फ किरदार नहीं निभाए बल्कि हर किरदार को जिया है एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी अदाकारी में नज़ाकत भी है गहराई भी सादगी भी है और ज़बरदस्त ताकत भी जी हाँ दोस्तों आज हमारे साथ हैं सिनेमा की बेहद सम्मानित और प्रतिभाशाली अदाकारा शबाना आज़मी तो आइए उनके सफ़र के पन्ने पलटते हैं उनकी फिल्मों को याद करते हैं उनकी अदाकारी को सलाम करते हैं और सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत उन पर फिल्म है अवतार शबाना आज़मी साथ में राजेश खन्ना

जहां आप डेडिकेट कर सकते हैं किसी को गाने और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आपको शबाना आज़मी पर पिक्चराज गाने अच्छे लगते हैं तो बस हमें मैसेज भेज सकते हैं किसी के नाम हम डेडिकेट करने वाले हैं गाने मगर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है बस जो गाने हमारे प्लेलिस्ट में हैं आपको पसंद आए

0: RM3 Radio.
1: आपके सितारे
2: जहाँ आपके सितारे में आज है स्पेशल शबाना आजमी की एक्ट्रेस थी पल भर में ये क्या हो गया ये जो गाना है ना वाह दिल को इतना सुकून पहुंचाता है कि क्या कहें और शबाना आजमी की बात अगर कहें तो और कुछ कहना उनके बारे में और ये था फ्रॉम द मूवी स्वामी तो बस शबाना आजमी का नाम आते ही जहन में एक ऐसी अभिनेत्री की तस्वीर उभरती है जिसने हिंदी सिनेमा में अभिनय की एक अलग भाषा को पहचान दी वो दौर जब फिल्मों में

अभिनय का मतलब सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं था बल्कि किरदार की आत्मा तक पहुंचना था। शबाना आजमी ने कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ मीनिंगफुल और पैरेलल सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई। उनकी खासियत कम संवाद लेकिन चेहरे पर पूरी कहानी, एक नज़र, एक खामोशी, एक हल्की सी मुस्कान और दर्शक समझ जाते थे कि किरदार के दिन में क्या चल रहा है। ये थी शबाना आजमी और ये जो गाना है ना, लगभग उनका सिग्नेचर गाना है फ्रॉम द मूवी मासूम। और मासूम फिल्म में इतने अच्छे अच्छे गाने थे कि क्या कहें। और अमोंग दो सॉन्ग्स ये गाना मुझे अच्छा लगता है और आई एम श्योर ये गाना आपको भी अच्छा लगेगा। इन द वॉइस ऑफ आरती मुखर्जी।

0: के सितारे।
1: जहाँ आपके सितारे प्रोग्राम में आप सबों का हम फिर से स्वागत करते हैं और आज माइक पर है देवीना और हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल गानों के साथ। ये है आज की हमारा जो सितारा शबाना आज़मी और शबाना आज़मी का फिल्मी सफ़र बेहद विविध रहा है। उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो समाज, रिश्तों, महिलाओं की ज़िंदगी और मानवीय भावनाओं के कई पहलुओं को सामने लाते हैं। अर्थ, स्पर्श, फायर, मंडी, मासूम, सुबह जैसी फिल्मों में उनकी जो अदाकारी है ना, उन्होंने दर्शकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया और यही वजह है कि शबाना आज़मी को सिर्फ एक स्टार कहना शायद कम होगा। वो एक एक्टर्स एक्टर हैं, ऐसी कलाकारा जिन्हें देखकर आने वाली पीढ़ियां अभिनय सीखती हैं। तो अगला गाना हम कैसे भूले, फ्रॉम द मूवी फकीरा, इसको आप एंजॉय कीजिए। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं अभी, आप सबों को दिल से धन्यवाद और आप जो हैं बस खुश रहें और ऐसे गाने गुनगुनाते रहें।

जहां आज श्रोताओं हम बात कर रहे हैं शबनाज़ पर। दोस्तों, अभिनय सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता। कभी कभी आंखें बोलती हैं, कभी खामोशी बोलती हैं, कभी चेहरे का एक भाव पूरी कहानी कह देता है। तो जैसे हम कह रहे थे कि आपके सितारे में आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक कलाकारा पर जो अपने ही चेहरे पर इतना अंदाज है उसमें कि उनका चेहरा बोल उठता था। वो है शबाना आज़मी। हज़ारा बातें बराहें मुर के देखी, ये गाना बेहद पसंद है इनको। जहाँ सरिता जी का ट्रोम्बोन से हैं, उनको सभी पुराने गाने पसंद हैं और थैंक यू। तो वे एंजॉय कर रही हैं और थोड़ी सी बेवफाई मूवी का ये गाना आप सुनना चाहते हैं सरिता जी। बस ये रहा आपके लिए और आप कह रहे हैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएँ।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: के सितारे।
1: यहाँ शाम के 5:06 हुए हैं और आज है स्पेशल डे, आज है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व और सभी लोग, बहुत से लोग जो हैं आज जुड़े हुए हैं पूजा पाठ से और कुछ लोग जो घर पर हैं पब्लिक हॉलीडे का

आनंद ले रहे हैं आप सबों को हमारा फिर से प्रणाम है, नमस्कार, आदाब और गुड आफ्टरनून। और आपके सितारे प्रोग्राम में आज आपका साथ दे रही है माइक पर देवीना और इम्फ्री रेडियो मनोरंजन पर। तो बस हम क्या कर रहे थे अभी, हम किस सितारे पर बात कर रहे हैं, शबन आजमी पर। और यहाँ पर एक मैसेज आया है, ओम गण गणपते नमो नमः, नाइस सेगमेंट, थैंक यू दारिन श्वेता रविश प्रिशा लविशा और अपाडू फैमिलीज ऑफ पुष्णुआ हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, बप्पा की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हम जो बात कर रहे हैं शबन आजमी पर, सो बस उनके अभिनय पर हम बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं उन फिल्मों और किरदारों की जिन्होंने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी, तो बस अगले जो घंटा है 6 बजे तक मेमोरीज, मूवीज और म्यूजिक से भरपूर ये प्रोग्राम। तो बस मासूम मूवी के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसने रिश्तों, मासूमियत और परिवार की भावनाओं को बेहद संवेदनशील अंदाज में पेश किया, नसीरुद्दीन शाह के साथ थी शबन आजमी। और उनके अभिनय में यहाँ भावनाओं की कितनी गहराई थी, ये फिल्म देखने वाले शायद कभी नहीं भूल सकते और फिल्म के गीत आज भी दिल को छू जाते हैं। और शबन आजमी जी डांस स्टाइल में भी उनको लोगों ने पसंद किया, परवरिश मूवी का ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में, साथ में हैं किशोर दा और शैलेंद्र सिंह साहब। तो बस इस गाने को एन्जॉय कीजिए शबन आजमी के साथ आज की शाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: आपके सितारे
0: जहाँ सारे पांच बजने वाले हैं और हम बात कर रहे हैं आज आपके सितारे प्रोग्राम में शबाना आजमी पर. वैसे शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था, तो उसका मतलब है आज है 15 दिन बाद उनका जन्मदिन होगा. उनके पिता कैफी आजमी एक मशहूर शायर थे. उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1974 में फिल्म अंकुर से की थी. शबाना आजमी ने अपने शानदार अभिनय के दम पर 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, जैसे फिल्म अंकुर, अर्थ, खंडहर, पार और कुछ अन्य फिल्मों में के लिए भी. उन्हें पद्म भूषण और कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है. तो बस शबाना आजमी की वो सूरत हमारे आंखों के सामने आ जाती है. तो ये गाना आपके लिए, फिल्म है फकीरा. शशि कपूर शबाना आजमी के साथ और आवाजें रफी साहब, लता जी.

0: के सितारे।
1: जहां दोस्तों शबाना आजमी का अभिनय सिर्फ दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंचा, वैसे उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मानों और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। लेकिन किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? शायद यही कि सालों बाद भी लोग उनके किरदारों को याद करें। और शबाना आज़मी के कई किरदार आज भी लोगों को याद आता है, उनकी यादों में जिंदा है। उनकी कला ने साबित किया, अच्छा अभिनय समय के साथ पुराना नहीं होता, वो समय के साथ और भी कीमती हो जाता है। बस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और शामिल करते हैं थोड़ी सी बेवफाई मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आशा जी की आवाज़ में। और ये गाना खास तौर पर श्यामा रघुनंदन जी के लिए, रंगोब से हमें सुन रही हैं। श्यामा जी, आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच। और आपकी सहेलियाँ, आपके पूरे परिवार के लिए ये गाना, और साथ में ये गाना जाएगा, डेडिकेट करते हैं। हमसे जुड़े हैं अभी कुडेर सिंह फैमिली और रघुनाथ फैमिली, तो बस इस गाने को एंजॉय करते हैं।

0: के सितारे।
1: जहाँ बात दिल में आई थी ना, इससे हम आ गए थे यहाँ पर आपसे बातें करने के लिए ऑन द ब्यूटीफुल शबाना आजमी। और दोस्तों, देखते ही देखते हमारी दो घंटों की ये सितारों भरी शाम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। आज हमने किया एक ऐसी अभिनेत्री को याद जिसने हमें सिखाया है कि अभिनय सिर्फ पर्दे पर दिखाई नहीं देना, बल्कि पर्दे के उस पार दर्शकों के दिल में उतर जाना है। शबाना आजमी एक नाम, एक पहचान, एक शानदार अभिनय यात्रा। तो इसे खूबसूरत याद के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। बहुत जल्द मिलने वाले हैं और एम्फ्रेडियो मनोरंजन पर, और आप सुन रहे थे आपके सितारे सिर्फ और सिर्फ MBC और एम्फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और हमारे बाद यहाँ पर आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। इसके बाद एक भोजपुरी गाना और 6 बजे आप पूरा समाचार सुन पाएंगे। सो बस आप सभी को फिर से एक बार कहेंगे गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, आपकी शाम जो है, आपकी जो राती है शुभ हो, और आप सब मुस्कुराते रहिए, संगीत सुनते रहिए और अपने पसंदीदा सितारों को दिन में हमेशा चमकते रहिए। बस सर, शुभ संध्या आप सभी को, आप सबों को ढेर सारा प्यार। छोड़ जाते हैं आप सबों के लिए परवरिश गाना, फिल्म का ये गाना, और इसमें आवाज़ें होंगी आशा जी की, साथ में होंगी आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार साहब। अजी ठहरो, ज़रा देखो हम तो चले, बाय बाय।

0: RM3 Radio. Radio.
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते सब कोई के प्रणाम। आप सब कोई के स्वागत बा हमारी धरोहर प्रोग्राम में। सबसे आगे था आप सब कोई के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत शुभकामना। आज का हमने सीमा पर गांव में शहर में हर जगह बड़ा बड़ा पंडाल में श्री गणेश जी के मूर्ति के दिखत है जा। ढोल के संगे गणपति बप्पा के जय जयकार सुनत है जा। तो हमने के दिल भक्ति और खुशी से भरावता कहे कि गणेश चतुर्थी के पूजा हमने के देश में बहुत दिन आगे से शुरू हो जाला। आज गणेश चतुर्थी के आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। और आज हमने ये बात पर ध्यान देवब जा कि का आप जाने ला कि ये त्योहार खाली भक्ति नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के एगो बहुत बड़ा ढाल रहल। आज हमने देखब जा कि कैसे गणपति के ये उत्सव विभाजित भारत के एक सूत्र में पीरों के संगठित करलक। गणेश जी के पूजा सदियों पुराना बा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक गौरव बढ़ावे खातिर मनावल जात रहल। बकिर उस समय में ये त्योहार मुख्य रूप से घर में और राजमहल तक ही सीमित रहल। फिर आल साल 1893 भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के राज रहल। अंग्रेज प्रशासन भारतीय लोग के एकदम मना कर ले रहल राजनैतिक बैठक लगावे पर या कोनो भाषण देवे पर। उ लोग डरत रहलन सा कि अगर भारतीय लोग संगे एकजुट हो जायन सा त सकी भारत में क्रांति मच जाए। ऐसन कठिन समय में अइलन भारत के महान स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उ देखलन कि भले ही अंग्रेज राजनीतिक बैठक पर रोक लगैले बा लेकिन धार्मिक आयोजन के उ लोग नहीं सकलन सा रोके ओकर पर कोनो पाबंदी नहीं रहल। बस बाल गंगाधर तिलक इही कानून से एगो रास्ता निकलन घर में होवे होला गणेश पूजा के एगो सार्वजनिक गणेशोत्सव के रूप देलन। गणेश भगवान विघ्न हरता हवन समाज के हर जाति के लोग उनकर पूजा करेलन सा। बाल गंगाधर तिलक उच्च नीच और जाति पाति के भेदभाव मिटावे खातिर बप्पा के पंडाल के एगो जरिया बनेलन। कहे कि जानेला उ बखत भारत के एकदम विभाजित कर देवल गल रहल डिवाइड एंड रूल के जो मानसिकता रहल बर्तानी लोग के उ लोग भारत में एकदम भर दे रहलन सा। अब इस सब पंडाल में समाज के सब लोग मिलके बैठियन जा सब कोई संगे मिलके आरती करियन जा और हिये पर अब गुपचुप आजादी के रणनीति बने लगल। देशभक्ति के गीत गावल जाय लगल कविता बुरल जाय लगल सब युवा पीढ़ी में देशभक्ति कूट कूट के भरल जाय लगल। और देखते देखते महाराष्ट्र से शुरू होल ई आंदोलन अब पूरा भारत में छा गल। और जब पहला गणपति जी के बड़ा जुलूस निकलल तो भारतीय लोग के एकजुट होके उत्साह में देख के बर्तानी लोग दंग रह गएलन सा। उ लोग असमंजस में पड़ गएलन सा। उ लोग के अंदाजा हो गल कि भारतीय जनता के ताकत कितना बड़ा बा और जोन दिन उ लोग चाहियन सा तब बर्तानी हुकूमत के हिला के रख दियन सा। जब हजारन जना ढोल ताशा के साथ गणपति जुलूस लेके सड़क पर निकलन जा तब पुलिस उ लोग के रोके नहीं सकल। ब्रिटिश ई देखलक कि उ लोग के साम्राज्य पर अब यहाँ पर सीधा खतरा मंडराय लगल बा। अब जब जुलूस में गणपति बप्पा के नाम ले बा तो जनिया कि गणपति बप्पा भारतीय जनता के फिरंगी आतंक से निपटे में सबसे पहला विघ्न हरता हवन। आप सब कोई के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर।

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। आस्था, भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच हो रहा है आज विसर्जन। आज गणेश विसर्जन के दिन मॉरिशस के अलग अलग समंदर तटों पर नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती रही। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से धार्मिक विधियां पूरी करने में मार्गदर्शन दिया। जलाशयों के गिरते जलस्तर के बीच CWA ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तेज कर दी। नदियों के पानी को साफ करने के लिए मोबाइल यूनिट्स और बोरहोल्स का अधिक उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, भारत में गणेश चतुर्थी पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लालबाग राजा सहित देश भर की पूजा पंडालों और घरों में बड़ी संख्या में लोग विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। नमस्कार, आस्था, भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच हो रहा है विसर्जन। यही संदेश देता है कि बप्पा का स्वरूप भले ही जल में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती हैं। आज बप्पा का साकार स्वरूप जल में विलीन हो रहा है, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदा जीवन में बना रहेगा। कल मंत्रोच्चारण के साथ जिन गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई, आज उन्हें विधि विधान से विदाई दी जा रही है। मॉरिशस के कई इलाकों में सुबह से धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अंतिम आरती के बाद श्रद्धालु बप्पा की प्रतिमाओं के साथ

0: विसर्जन स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। सेंट फेलिक्स के मराठी विश्वनाथ मंदिर में सुबह श्रद्धालु गणेश पूजा के लिए एकत्र हुए। मंदिर में धार्मिक विधियां पूरी करने के बाद भक्त गणपति जी की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में समुद्र तट तक रवाना हुए और वहां विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है और बप्पा को अगले वर्ष फिर पधारने के आग्रह के साथ विदाई उन्हें दी जा रही है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की ओर से कल गणेशोत्सव का राष्ट्रीय आयोजन बॉशेरी स्थित ग्रांबोआ मराठी मंडली के श्री गणेश मंदिर में किया गया। आज पूजा अर्चना और आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ विसर्जन यात्रा में भाग लिया। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन आवालोन में गुली नदी में किया जा रहा है और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना के साथ भक्तों ने बप्पा को भावभीनी विदाई दी है। गणपति बप्पा की भक्ति में आज जबलमऊ में भी पूरी तरह सराबोर रहा। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने वहां गणेश चतुर्थी का राष्ट्रीय आयोजन किया जिसमें द्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा अर्चना मंत्रों और भजनों के बीच प्रथम पूज्य भगवान गणेश का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता के चरणों में देश की सुख शांति परिवारों की समृद्धि और सभी के मंगल की प्रार्थना की। कुनल गोजी गीता सरन।
1: गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने आज बेलमऊ समुद्र में भावुक मन से बप्पा को विदाई दी। गणेश विसर्जन के अवसर पर भक्त ढोल नगारों और भक्ति गीतों के साथ गणपति की मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक लाए। श्रद्धालु भगवान गणेश से सुख शांति समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। विसर्जन से पहले भक्तों की आंखों में खुशी के साथ साथ बप्पा से बिछड़ने का भाव भी नजर आता है। बप्पा की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने विधि पूर्वक भगवान गणेश की प्रतिमाएं समुद्र में प्रवाहित किया। विधि विधान के साथ संकल्प किए गए दिन पूरे होने पर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जितने श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त बप्पा की प्रतिमा को घर लेकर आते हैं उतने ही प्रेम और भाव विभोर होकर उन्हें विदा भी कर देते हैं। देश के पूर्वी इलाके के सभा संगठनों के सदस्यों और घर परिवार में जिन लोगों ने गणेश जी को अपने यहाँ स्थापित किया था वे आज बेलमऊ समुद्र तट पर एकत्र हुए। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर कैलाश लौट जाते हैं। गणेश विसर्जन हमें ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली हर चीज एक दिन विदा होती है लेकिन आस्था और भक्ति हमेशा हमारे दिलों में बनी रहती हैं। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रतिमाओं को विसर्जित किया और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया का जयकारा लगाया।
0: आज गणेश विसर्जन के दिन मॉरिशस के अलग अलग समंदर तटों पर नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती रही। मोशवाजी में भी अफसर पूरे समय स्थिति पर नजर रखते दिखे। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से धार्मिक विधियां पूरी करने में मार्गदर्शन दिया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी समंदर में अधिक गहराई तक न जाए। गणेश चतुर्थी पर्व का अंतिम और सबसे भावुक चरण है विसर्जन। इसका अर्थ केवल प्रतिमा को जल में समर्पित करना नहीं बल्कि बप्पा को विदा करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने मन में बनाए रखना भी है। विसर्जन से पहले उत्तर पूजा की जाती है। इस अंतिम पूजा के बाद गणपति जी की प्रतिमा को स्थापना स्थल से सम्मानपूर्वक उठाया जाता है और विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। पालमा में सधु और रामा परिवारों ने मिलकर पूरे विधि विधान से उत्तर पूजा की। इसके बाद परिवार के सदस्य गणपति जी की प्रतिमा के साथ विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। कैंडी मोगा यशना मिश्रा।
2: गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इससे पहले उत्तर पूजा की जाती है। उत्तर पूजा भगवान गणेश की विदाई से पहले की जाने वाली

0: विधि है। जिस स्थान पर वे कल से विराजमान हैं, वहाँ अंतिम बार उनकी भव्य आरती की गई। ये भावनाओं से भरा पल होता है, जब घंटों उनकी आराधना करने के बाद उन्हें विदा करने का समय आता है।
1: Le sentiment qui nous gagnait, la prière qui nous ferme, on trouve tout le monde content. J'étais là, sourire dans notre figure quand je t'allais, je dis à nous, mais c'est vrai, pas capable d'expliquer sa bénédiction, sa émotion de gagner ici-là, qui ça a vraiment fait nous chaud au cœur.
2: Nous bien contents sa fête là, un an, une fois elle est venue, nous tous enjoy ensemble.
3: Nous santé, nous emmène papa. Que nous, même quand nous allons revenir, on ne va pas bien avec respect.
0: इसके पश्चात उनकी मूर्ति को प्रांगण में ले जाकर वहां उनकी आरती उतारी गई। शिव पार्वती पुत्र गणेश ज्ञान के देवता हैं, वे विघ्न विनाशक कहलाए जाते हैं और प्रांगण में उनकी आरती उतार कर यही प्रार्थना की जाती है कि वहां कोई विघ्न न हो, सभी दुख दर्द मिट जाए। सिर पर उनकी गद्दी चढ़ाकर अब उन्हें विसर्जन के लिए निकाला गया। जुलूस निकालकर बप्पा की जय जयकार की गई। बप्पा की मूर्ति को जिस प्रेम और भक्ति के साथ स्थापना के लिए सधु और रामा परिवार पाल्मा में अपने घर उन्हें लाए थे, अब उसी भाव के साथ उनका विसर्जन करने का समय भी आ गया है।
4: हर शुभ कार्य से पहले जिनका स्मरण किया जाता है वे हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश, कहीं गणपति कहीं गणेश तो कहीं विघ्न हर्ता के नाम से पूजे जाने वाले घरों और पूजा स्थलों में प्रवेश द्वार पर रक्षक के उनका ये अनोखा स्वरूप केवल एक धार्मिक छवि नहीं, उनका इसका प्रत्येक अंग जीवन की एक गहरी शिक्षा और आध्यात्मिक संदेश अपने भीतर समेटे हुए हैं। मंदिर कोविल और मंदिरों में अलग अलग रूपों में विराजमान भगवान गणेश के इन्हीं प्रतीकों की पूजा की जाती है। विस्तार गीता स्वर्णन के साथ।
5: अक्सर घरों और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाने वाले गणेश जी मेहमानों और भक्तों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में हाथी के सिर वाले देवता गणेश जी का सबसे पहले स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर बाधा को दूर कर देता है। वे हमारे जीवन के हर नए अध्याय पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पूजा स्थलों पर हर समारोह की शुरुआत में गणेश जी का नाम लिया जाता है, ताकि सभी पूजा विधि अच्छे से संपन्न हो। हिंदुओं के बीच गौरी पुत्र के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणेश मंदिरों में शिव परिवार का हिस्सा हैं। वे भगवान शिव, माता पार्वती और मुर्गा के साथ विराजमान होते हैं।
6: गणेश से पार्वती माता,
5: भगवान गणेश पार्वती माता के पुत्र हैं। माता ने उनका आह्वान किया, अर्थात वे पहले से थे। वास्तव में आदि गणेश को हम पूजते हैं, हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसे जीवित करते हैं और फिर पूजते हैं। माता पार्वती ने यही किया था।
6: Et puis ça nous met prendre protestant là-dedans, nous fait vivre vivant. Après ça nous avons prié. C'est Mata Parvati qui fait ça même.
5: कोविलों में गणेश जी की पूजा अन्य देवताओं विशेषकर आमेन और मुर्गा के साथ की जाती है। कुछ पूजा स्थल विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित हैं। गणेश कोविल में गणेश जी भक्ति का केंद्र हैं। यहाँ होने वाले हर समारोह की अध्यक्षता गणेश जी ही करते हैं। इस कोविल में मुख्य रूप से भगवान गणेश ही हैं। यहीं पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। मॉरिशस में ये एकमात्र स्थल है जहाँ गणेश भगवान के लिए कोडी लगाते हैं, 10 दिनों के दौरान व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इसके बाद ध्वज नीचे लाते हैं। मंदिरम में गणेश जी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान हैं। उनकी पूजा इस रूप में भी की जाती है कि वे भक्तों के लिए रास्ता खोलते हैं और उनकी आस्था और आध्यात्मिक खोज में साथ देते हैं।
7: गणेशा लीमेम ली आदिपति पो,
5: गणेश भगवान आदिपति हैं। जब शिव जी की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में उन्हें विश्व सेना के रूप में पूजते हैं। वे बुद्धि और ज्ञान के देवता भी हैं।
7: Veja, ali mesmo ele comanda por Sriman Narayana, ali aussi a depois por l'éducation un petit peu côté vidya, côté ali mesmo ele donne nous la connaissance.
5: अलग अलग मंदिर, परंपराएं और संस्कृतियां, लेकिन विघ्नहर्ता के प्रति भक्ति एक ही है। वे गणेश जी जो हर बाधा को दूर करते हैं।
4: और आरती की लो मोदक की मिठास और

0: बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब। भारत में गणेशोत्सव ने आस्था परंपरा और संस्कृति को एक सूत्र में बांध दिया है। लालबाग चौराहा के भव्य दरबार से लेकर घरों की शांत पूजा तक हर भक्त की एक ही प्रार्थना है, विघ्न दूर हो और जीवन में मंगल बना रहे। आस्था गोविंद।
1: भक्तों की लंबी कतारें, आंखों में अटूट श्रद्धा और होठों पर एक ही जय घोष, गणपति बप्पा मोरिया। लालबाग चौराहा के दरबार से उठी भक्ति की ये लहर पूरे भारत को गणेशमय कर रही है। कहीं शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि, कहीं मंत्रों का जाप, तो कहीं आरती की लौ में नतमस्तक श्रद्धालु। घरों और पंडालों में विराजे गणपति के सामने भक्त सुख संपत्ति, शांति और मंगल की कामना कर रहे हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अपने भीतर जीवन का गहरा संदेश समेटे हुए हैं। उनका विशाल मस्तक बड़ी और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। बड़े कान सबकी बात ध्यान से सुनने का संदेश देते हैं। छोटी आंखें लक्ष्य पर एकाग्र रहने की सीख देती हैं। उनकी सूंड शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रतीक है। गणपति का प्रिय मोदक ज्ञान से मिलने वाले आंतरिक आनंद का प्रतीक माना जाता है। वहीं उनके चरणों में बैठा छोटा सा मूषक मन की इच्छाओं और अहंकार को वश में रखने की प्रेरणा देता है। मंगलकर्ता, बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा के साथ भक्त जीवन की हर नई शुरुआत करते हैं। यही विश्वास है कि जहाँ गणपति का आशीर्वाद हो, वहाँ कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। भक्ति और उत्साह के इन दिनों के बाद होगा विसर्जन। मिट्टी से बना गणपति का स्वरूप फिर प्रकृति में समा जाएगा। ये संदेश देते हुए कि रूप भले ही आंखों से ओझल हो जाए, ईश्वर की शक्ति और उनका आशीर्वाद सदा हमारे भीतर बना रहता है।
0: और स्थानीय स्तर पर लौटते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। मॉरिशस में पर्यावरण पर बढ़ता दबाव अब चिंता का विषय बन रहा है। देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधन कितने समय तक हमारी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, इस पर यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम ने अपनी नए पॉलिसी ब्रीफ में सवाल उठाए हैं। बजट 2026-2027 के विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। चेतावनी दी गई है कि 2030 तक मॉरिशस को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और जलाशयों में पानी लगातार कम हो रहा है, ऐसे में CWA अब नदियों और भूमिगत जलाशयों से पानी ज़्यादा पानी ले रहा है। नदियों के पानी को साफ करने के लिए मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। कोशिश यही है कि जलाशयों में बचा पानी सुरक्षित रहे और दिसंबर तक लोगों को पानी मिलता रहे, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो पानी की कटौतियां और बढ़ाई जा सकती हैं। इस साल जनवरी से सितंबर महीने तक 193 नाबालिगों के लापता होने की शिकायतें पुलिस को मिली। इनमें अधिकतर मामले बच्चे के घर छोड़कर चले जाने से जुड़े रहे। राहत की बात यह है कि 181 बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। ऐसे मामलों से बचने के लिए फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने और उनकी संगत के बारे में जानकारियां रखने की सलाह दे रही है।

आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर तक सुबह 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात सेंट्रल प्लाटो और कुछ हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। कल दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बारिश जारी रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। और ऊंचाई वाली जगहों से बचने तथा क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर गाड़ी चलाते हुए सावधान

पानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर कुछ इलाकों पर, कुछ तटीय इलाकों पर पड़ेगा और कुछ लगूनों पर भी पड़ेगा। इसलिए मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से इन तटीय इलाकों और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, खासकर हाई टाइड के दौरान। तापमान 3 डिग्री से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। शाही इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:05 पर सूर्योदय, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में युद्ध विक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

Choc Macha Sunye, Princess Anne Street, 7 Mil Triolemi, Princess Anne Street, 7 Mil Triolemi, Satatar Sal, ki 77 years old, ki Mrs. Bibi Esan Shadubakas, Mrs. Bibi Esan Shadubakas, Pedashi Nambatan, जो बीबी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज रात 8:15 बजे इनका जनाजा आज रात 8:15 बजे इनकी बेटी मिसेस तानुजिया एमा बकस की मकान प्रिंसेस आन स्ट्रीट से चैमिल थ्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए कब मालोर का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुनाइट एट 8:15 PM. Plateau Road, Goodlands में 79 साल की 79 years old श्रीमती रूलमती बदाई पैदाशी नाम अलगू जो बर की मामा बदाई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और हमारी सहयोगी निर्मला की माँ थी. इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री विदेश बदाई के मकान प्लाटो रोड गुलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुलेंस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो आफ्टरनून. ऑचोयम गली बुवालों में ऑचोयम गली बुवालों में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवीवंती बालोराम जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे के मकान औचोयम गली बोवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो में बल्कि शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM. डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरांस पितोमी 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेम दत्त चरण जो प्रभु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है. कि अर्थी कल सुबह नौ बजे इनके बेटे श्री कवि चरण के मकान डॉक्टर बेनेडिक्ट रोड लेस्वे हॉस्पिटल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM. महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसमत सिचन पिताशी नाम भी से सर जो जयंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान महाराणा प्रताप रोड पीछे आफर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM. प्रिंसेस मार्गारेट लेन पेटी ट्रिविया में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिदुती शांतोष श्रीमती बिदुती

हिदाउती शांतो, जो शांति बगमर नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के 10:30 बजे के बेटे श्री किशन लाल बगमर के मकान प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेजिटरिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मुताई सेंट पियर बम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। इबिस्कस रोड लागोलतमी, इबिस्कस रोड लागोलतमी 77 years old श्री बीकू इसराम, जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री जोशन इसराम के मकान इबिस्कस रोड लागोलत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियन वॉक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। क्रिमेशन रोड कांतोगल में, 92 साल के 92 years old श्री धनपत गनोरी, जो दीपलाल नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री सत्येंद्र गनोरी के मकान क्रिमेशन रोड कांतोगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। शेनफील्ड रोड रिविया जो पॉमी, 93 साल के 93 years old श्री रामचंद्र जोय, जो जोय चेकमैन से एंते नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 3:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी जोय के मकान शेनफील्ड रोड रिविया जो पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंदिलास गांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 3:30 PM।

बंतिया वाकवामी 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूमिला राम, श्रीमती रूमिला राम जो बड़ोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। केयर थी कल दिन के एक बजे, इनके भतीजे श्री भवेश राम के मकान बंतिया वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। टैगोर लेन इन एस्पेरेंस कॉर्टियर मिलिटेयर में 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वरुणा बर्ना पैदाशी नाम रघुनंदन जो वरुणा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके ससुर श्री सुरुज बर्ना के मकान टैगोर लेन इन कॉर्टियर मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्दमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती आदुंकली, श्रीमती अमरावती आदुंकली पैदाशी नाम का जाधर जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे लाशा पेलौदौंत एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड बॉशेरी में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजय देव सिंह गोपाल जो अजय नाम से ज़रा जाने जाते थे और बॉशेरी चाय कारखाने के पूर्व सरदार थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉशेरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। कादिया बाबा लेन लिस्कालिये में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रानी प्रेमचंद जो प्रतिमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी माँ श्रीमती दमयंती प्रेमचंद के मकान कादिया बाबा लेन लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इस समय 6:30 बजने को है। नई सोच में आप सभी का स्वागत है। शाम का समय है, बहुत ही शुभ दिन रहा है। मैं किरण नई सोच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक गणेश गाने के साथ, क्योंकि सभी अभी गणेशमय वातावरण में मग्न हैं। बहुत से लोग जुलूसों से वापस आ रहे हैं, तो बहुत से लोग दिन भर की पूजा के बाद अब रेडियो के पास बैठे होंगे आराम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नई सोच आपके साथ।

शाम का बहुत ही सुंदर समा बंधा हुआ है। एक तरफ सूर्यास्त तो दूसरी ओर चंद्र भी निकलने वाला है, और चांद और सूरज का ये जो मिलन का समय होता है मन को मोह लेने वाला होता है। एक अलग सी शांति होती है मन में। ऐसे में कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो कि इस राग से बहुत ही मेल खाता है। मैंने प्यार किया फिल्म से लिया गया, लता मंगेशकर और बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। अगला गाना आजा शाम होने आई।

0: इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन और चल रहा है आपका मनपसंद प्रोग्राम नई सोच, जहां पर आप कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे कि आपको आपके बीते हुए दिन याद आते हैं लेकिन एक नई सोच के साथ। और हमारा साथ रहेगा 7 बजे तक। 7 बजे के बाद हम अगले प्रोग्राम में भी आपका साथ देंगे दिलों की आवाज़ में, जो कि रात्रि के 9 बजे तक चलने वाला है। अगला गाना 1942 अ लव स्टोरी, प्यार हुआ चुपके से।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Nee so, nee so, nee so, nee so.

शाम के 6:50 हुए हैं और एक तरफ सूरज ढल रहा है और दूसरी तरफ नई सोच के उगने का वक्त आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपका पूरा मनोरंजन हो रहा होगा। इसके बाद हम 10 मिनट बाद बढ़ेंगे अगले प्रोग्राम की ओर, दिलों की आवाज़। फिलहाल फिल्म दिल से लिया गया अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में मुझे नींद ना आए।

शाम ढली, दीप जले और नई सोच की बात चली, क्योंकि हर शाम एक मौका होता है खुद को दोबारा शुरू करने का। अगला गाना फिल्म चिच्चोर से लिया गया, यशुदास और हेमलता की आवाज में, जब दीप जले आना, जब शाम ढले जाना।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: इस वक्त शाम के 7:04 हुए हैं और दिन की भागदौड़ खत्म होने को हुआ, अब दिल की बात शुरू। स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम दिलों की आवाज पर। मैं किरण आपका साथ दूंगी अभी से रात के 9 तक। यहाँ पर हर धड़कन को मिलेगी एक आवाज़। अगला गाना ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी।

आप जिस प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना खास आपके लिए, दिल था अकेला अकेला, बप्पी लहरी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सुरक्षा से लिया गया।

आज छुट्टी का दिन रहा और इस वक्त सड़कें काफ़ी सुनसान हैं, मतलब कि आप अपने घरों में कुछ ऐसी जगहों पर रुके हुए हैं जहां पर आपको आराम करनी है और आराम के बाद एक नए दिन की शुरुआत के बारे में सोचना है। ऐसे में अगर आप दिलों की आवाज़ सुन रहे हैं तो इस वक्त शायद किसी के लिए आपका भी जिया जल रहा होगा और जान भी तड़प रहा होगा।

सवालों का जवाब कहीं बाहर से नहीं, वो दिल से आती है। अगला गाना फिल्म जिंदगी एक जुआ से लिया गया, दिल तो दिल है।

हमें सुनने वालों में सिर्फ मॉरिशस के लोग नहीं हैं, बल्कि देश विदेश से इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं, ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है। और इस समय हमें मैसेज भेज रही हैं बेल्जियम से प्रकाशवती जी, और आप कहती हैं कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, आज का ये सिलेक्शन भी आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। तो प्रकाशवती जी, अगला गाना आपके लिए फिल्म दाग से लिया गया, किशोर कुमार की आवाज़ में, मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूँ। और हमें सुन रही हैं इस समय कॉन्फुको से आंटी जी, और आप गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सबको दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत सारी मंगल कामनाएं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, दिलों की बातें करने के लिए किसी ख़ास मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। अभी तक हम शाम का समय का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब विदेश से आप हमें सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास अभी शाम का समय नहीं, बल्कि कुछ और समय है। अगला गाना आप सभी के नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अगर अभी अभी आपने रेडियो ऑन किया हो तो आपको इशारा करते चलें कि आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़। 7 से 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ

आपके लिए कुछ ऐसे गाने हम चुनकर लाए हैं जिससे कि आपको दिलों की बातें सुनाई दे, कुछ ऐसे गाने जिससे कि आपको अपने जीवन के कुछ ऐसे पल याद आ जाएं जहां पर आवाज से कम और चुप्पी से ज्यादा काम लेते थे, जहां पर दिलों की आवाज सुनने के लिए ज्यादा लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में।

बंद के नजर दिल की जुबा। इस गाने के बाद जो अगला गाना चलेगा, अदनान सामी की आवाज में, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ। 7:53 हुए हैं, आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हैं और प्रोग्राम चल रहा है दिलों की आवाज़।

इस वक्त हमें बहुत प्यार के साथ सुन रहे हैं दारन, श्वेता, रवीश, कृष्णा, लवेशा और खुशनुआ के अपाडू परिवार। और आप जिस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं, यकीन मानिए वो गाना मैं भी चलाना चाहती हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। जिस दिन मुझे वो गाना मिलेगा मैं ज़रूर उसे चलाऊँगी। और हमें सुनने वालों में इस वक्त हैं निशा सजादा, सूरज शर्मा सजादा और निशाल और बिसेसर परिवार, आप त्रियोले से हैं, आपके लिए भी ये अगला गाना।

रात के 8:13 हुए हैं, आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम दिलों की आवाज़, और दिलों की आवाज़ में उन सभी गानों को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको अपने दिलों की बातें याद आएं। और कहते हैं कि दिल की बात तभी सुनाई देती है जब दुनिया का शोरगुल बंद हो जाए। दिन भर आप व्यस्त रहे, आज छुट्टी का दिन था, आप में से बहुत सारे लोग गणेश पूजा के लिए निकले,

जुलूस में भी भाग लिया। अब वक्त हुआ है सन्नाटे में दिल की आवाज़ सुनने का। अगला जो गाना है फिल्म तलाश से लिया गया, जिया लागेना।

जैसा कि आप देख रहे हैं, जब समय खूबसूरत पलों के साथ बनता हो तो वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। 7 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ और अब हमारे साथ सिर्फ आधे घंटे बचे हैं और इस आधे घंटे के अंदर हम उन गानों को चलाएंगे जो आपके दिल को छूता है। फिनिक्स से रिहाना हमें सुन रही हैं और ये अगला गाना खास आपके नाम रिहाना जी, फिल्म दीवाना से लिया गया। फिल्म दीवाना जो एक समय में बहुत ही मशहूर हुआ था, उसके हर गाने मशहूर हुए थे और इसके गाने कुछ ऐसे हैं।

पलकों की तले जो सपने पले, जानम वो सपने तो सच हो गए। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में और अमित कुमार साथ दे रहे हैं। इस गाने को सुनकर आपको फिल्म का नाम ज़रूर याद आएगा, फिल्म है सैलाब।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अगला गाना सुखविंदर की आवाज़ में. इस वक्त अगर आप डिनर कर रहे हो तो शुभ आहार, और अगर कल की तैयारी में लगे हुए हो तो कल का दिन आपका बहुत शुभ हो, ऐसी हमारी शुभकामना है.

दिलों की आवाज में दिलों की बातें हो रही है। अगला जो गाना है वो फिल्म शराबी से लिया गया, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबते हैं प्यार के।

मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, आप अपनी मंजिल तक ठीक ठाक पहुंच जाइए। हमारा भी रास्ता लेने का समय आ गया। आपका साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे अच्छे गाने चलाने का हमें मौका मिला, जिससे कि आपका मनोरंजन हुआ हो। हम आपसे विदा चाहेंगे, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
5: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
0: गमत तो शुरू करवा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मॉरिशस एम मोड पर आठवनीस और रेडियो मनोरंजन 94.95 और 98.2 FM पर सब संगत यालों के नमस्ते और आदाब स्वागत करते हैं जाते लोग के हमने के शो में मस्त शो है इसका नाम है भोजपुरी तड़का अभी से लेके रात के 11 बजे रे तो लोग के नचावब से और साथ में गावब से झूमब से कमरवा डुलावब से मन करता कौन अभी भोजपुरी की सुने के नंबर वा दबैया काज जगो दे हुए जगो विद सैक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर एसएमएस कर दिया हाँ ये प्रोग्राम चलता है रेडियो और टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मन मॉरिशस पर रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज ऑन करे और सब अपन मिसाज विदा करी और भी ढेर कोई उनके साथ देवता सब कुछ के स्वागत बा और संगत यारो आज हाँ मंगल 15 सितंबर 2026 आज हम मनावते गणेश चतुर्थी के त्यौहार गणेश चतुर्थी गणेश भगवान के जन्मोत्सव है गुड बर्थडे है गणेश जी बुद्धि ज्ञान और समृद्धि के देवता हवन जा कोनो भी कार्य करे से पहले हमने गणेश भगवान की पूजा करी रह सबका नाम नहीं रह सर ये त्यौहार में घर घर में गणेश जी की मूर्ति के स्थापन होला और फूल दुर्वा फल दीप लड्डू और मोदक से हमने भगवान के स्वागत करी रह सर गणेश जी जिन जिन गणेश जी जो बुद्धि और ज्ञान के देवता है और गणेश जी के मंत्र जाप और आरती होला एक सप्ताह से गणेश जी के भजन कीर्तन करी रास फिर शाम की झाकरी भी होला और अंत में आज गणेश के विसर्जन होला गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हवन जा होकर दुगो पत्नी हवन जा एक हरिधि और सिद्धि और गणेश के ढेर मना नाम बा जैसे लंबोदरा विघ्नेश्वरा एकदंता शिव नंदन पार्वती नंदन सिद्धि विनायक महागणपति बाल गणपति आदि आदि तो ये त्यौहार जो है भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के मनावी रास एमबीसी की पूरी टीम की ओर से जितना कोई आज है ये गणेश चतुर्थी मनाई रन जा और विसर्जन कर लन जा सबको के हार्दिक शुभकामना गणपति बापा मोरिया गणपति बापा मोरिया तो जितना गणेश के भक्त हमने के अभी रात के देखा था टिकटॉक पर और रेडियो पर सुना था तो है गणेश वंदना तो लोग के नाम

संगत्या लोग एगो माँ बाप हमेशा अपन नेका के भलाई सोचेला और अपन नेका के भलाई खातिर सब कुछ करेला पर लेका लोग ई बात नहीं समझेलन स कोनो कोनो लेका लोग अपन माँ बाप से ढेर मुँह चलावेलन स माँ बाप की बात नहीं सुनन स कोनो कोनो लेका अपन माँ बाप पर हाथ तक छोड़ देवेलन स तो कौन कहते लड़का हो कि माँ बाप की बात नहीं सुन सा माँ बाप कड़ी मेहनत करता था कि कर खाती लड़का लोग खाती ना पर लड़का लोग जो है भरी तेजी भरी जिद्दी का बोल भैया पर हमने की काम है लड़का लोग के सिखाए कि जब लड़का लोग छोटा से समझेब तब लोग समझी अब लड़का बड़ा होगा तब समझावत हो तब तो बहुत देर हो जाए अगला गीत थोड़ा जीली है गीत तो हमने चाहो थे इस सब संगतियारों के नाम जो हमके साथ जुड़ल हवन जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर सुनजेनी है गीत और खातिर विमी अनुराम जतन नौशीन इब्राहिम पटेल प्रिंसेस वर्षा है गीत चली लिंजे मनोज बटू वनीब दूना जोश रागिनी केसर लिजू संध्या याश्रेव लखु क्रिस्टेल संदिरन मिमी बटरफ्लाई फिर बिकाराम सिंह है गीतरो नाम अनुषा लकी वुमन देवीना रामबिरिच अलना होज दीपक दिबिदाल दीपक दिबिदयाल माफ करिए विशाल डोबे दीपक दिबिदयाल और है गीत चलावते इस आतिश रामपर्सन परिवार के नाम फिर है गीतवा राम खातिर और सब परिवार के नाम तो जितना कोई भी और युधिष शिवदाय भी हमने के साथ जुड़ा है पद्मा बोरू हेलो जी नमस्ते सुस्वागतम साधना सुकन साइरा और स्वीट एंड लवली रोहाना हसन आदि फिनिक्स हमने के साथ देवतवन और बुलतवन प्रोग्राम एकदम बढ़िया बात चला गीत सुने थोड़ा सुन स्ट्रेस दूर कर से गीत से थोड़ा सुन नाचब सा गाव सा कमरवा डुलावब सा गीत गेले वन खालिद मोहम्मद बंधु गीत के बोल है थोड़ा जीरे हम तो बोल जी भर के जीरे जिंदगी दो दिन के सफर बा का काचनी कौन सी होई कौन सी नहीं चला नाचब सा गावब सा झूमब सा और युधिष उदारी अपन कमरवा भरा जोर जो है मटकावत है तो युधिष उदारी एक गीत खासम खास तोहर नाम

संगतिया लोग एक इंसान अपन चरित्र और अपन स्वभाव से पहचाना जाए ना कि अपन नाम से नाम में क्या रखा है इंसान अपन अच्छा कर्म से पहचाना जला अगर तू एक अच्छा इंसान हुआ तो सब कोई तोरा पसंद करी पर अगर तू को बुरा इंसान हुआ तो सबके डरावेला तो कोई भी तोरा इंसान कर तो कोई भी तोरा रिस्पेक्ट नहीं करी तो मान आदर नहीं करी अच्छा रब अच्छा बुरी बोलबा तो सब कोई तोहर से सच्ची तोहर से प्यार करी तोहर अपना मानी ये बात सच है और ऐसे में सिर्फ सुनम जगला गाना सुबह रामचंद फकीर गेलेवन दुल्हन के दादी और हमने की एगो संगतिया वन यूषा नाम नाम दरकन हेलो यूषा नाम दरकन जनाब यूषा नाम दरकन हाईलैंड हाईलैंड्स बधाई हो बधाई या तू अब साइकोलॉजिस्ट बन गला हुआ एजुकेशन साइकोलॉजी में एमए कर ले हुआ जा तब बहुत बहुत बधाई तोहर अम्मी जान तोहर बहन और सब नाम धरकन परिवार की ओर से यूषा नाम धरकन के कंग्रेचुलेशंस शाबाश और हमियों की ओर से एमबीसी की पूरी टीम की ओर से यूषा नाम धरकन को बहुत बहुत बधाई आपने हाईलैंड से बहुत परिश्रम करके एग्जाम्स पास हो लेन और अब तुगो को पसिकोलोग हवन जाता बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत तोहर नाम गीतवा तोहर खातिर खासकर यूषा नाम धरकन धे माना प्यार और बधाई कंग्रेचुलेशंस ब्रावो

ऐसे ही नचते गाते रहिए हमने के साथ दिया एमबीसी रेडियो पर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस संगतिया लोग हमने भगवान के इधर उधर खोजी रहा पर असल में भगवान हमने के भीतर बा हमने के हृदय में बा हमने के दिल में बा और वो बसल बा हमने के दिल के अंदर अगर दिल साफ रही तो सब ठीक बा दिल भी साफ नहीं रही तो कितना पाठ पूजा कर बो व्यर्थ पूजा पाठ तब सफल हो रहा जब हमने के दिल साफ रहेगा हो कि नहीं तो हमने के आत्मा में भगवान बसल बा सब कोई में भगवान बा एक हाजिर हमने सब कोई के आदर सत्कार करे सर सब कोई के नमस्ते सलाम कही रहा सर घमंडी नहीं बन गया है घनवा नहीं करे के जे कोई के जे कोई से भी मेरे बस सबके राम सलाम करते रहिया और अगला गीत जुन हबी को संगत पता लिवरपूल गोल डालता है वो गीत डाल दे लिवरपूल पर आए हाय नीरज गुप्त मधु गई वो अनुषा गीत और खातिर बिका राम सिंह देवीना राम बिरेच अलना रोज दीपक देवी दयाल फिर हई गीत चली रवि मैथिली श्रीपा इटाली से हो इटली से हवन और यूजर 4338 है गीत हो नाम लिवरपूल गोल डाल दे लगता चला गीत सुनम जा लोगांश गोविंदर लोगेश आप साउथ अफ्रीका से मिलकर सुना थवन और देखा थवन बहुत बहुत धन्यवाद नीरज रामधन वेनिस इटली से और गीत तोहर पत्नी ओके तोहर पत्नी जो दुनिया में नहीं बा ओके आई एम रियली सॉरी और मिस्टर लामा है गीत और नाम बिरज भूखन मुकेश बिरज भूखन हेलो है गीत और नाम प्रकाश कुमार हेलो मिनोनिया गीत मांगता कर्मा इंद्रानी सब बिहारी परिवार को अच्छी मिलती है से और है गीत चलावते इस लिवरपूल के गीतवा आवता बाबू थोड़ा इंतजार कर विकास रामलेखा गीत और नाम कह हम ऐसी बात नहीं समझे कहे इतना सब कोई प्रेस वाला ड्राइव कर बता सब कोई प्रेस है बीच में चले के सब कोई प्रेस है आतान कर भैया बारी बारी से वो गीत चाली से अभी को जालुक दली सा अब चलिए जितना लिवरपूल के फैंस हमने सुना था गीत लोग के नाम

बाप रे बाप है लिवरपूल की धमाल दिखला सच के लिवरपूल वा गोल डाल रखो कोई नहीं तान कर पर लिवरपूल नीमन से गोल वा डाल दिला फिले में अब का करवा रात के 9 बज के आधा हुआ था और डॉक्टर बोलेला शराब नहीं पिए के डॉक्टर बोला सिगरेट नहीं फूके के और डॉक्टर बोला घा के चीज नहीं खाए के और हमने क्या कही जा सर मैं सब लेकों तो कही जा सर ये खातिर प्रॉब्लम होला और सब पैसा डॉक्टर डगे जरा अगर सब कोई अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे शराब नहीं पी सिगरेट नहीं फूकी बैलेंस है खाए तो कोनो बीमारी नहीं हुई भैया ढेर दिन से कब्जा जिए पर आजकल आदमी सब लेकों जाने न सर

सिगरेट पीबा तो प्रॉब्लम हो कैंसर हो आई हो दिल की बीमारी हो जानी रहा सा शराब जब सा तो ही प्रॉब्लम हो पर फिर भी कायन इतना तेजी का ही इंसान रहला और तेजी कारण वो अपन जान गवा देवेला हो कि नहीं तो हम ही बोल सर डॉक्टर के बाद चेहरा सुने के डॉक्टर जब थोड़ा सलाह दे होता कि सिगरेट नहीं फूके के शराब नहीं पिए के तो वो जाना था काबुल होता और डॉक्टर बोला गा के चीज़ नहीं खाए कि जितना लेगीम खाइबा अच्छा है जितना फूई खाइबा अच्छा बहुत स्ट्रेस से तनाव से दूर रहिए अब घर में किचकिच है सब नहीं करे के हैं कभी कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जा रहा और पत्नी किचकिच किचकिच करते रह रहा तो ये सबसे छा दूर रहेगी भैया हाईओ सब स्ट्रेस करेगा और यही से दिल की बीमारी भी सकेला हो हाँ तो देखा तो झगड़ा हुआ था पति पत्नी में तो एक जना के चाह सीधे हो जाए के या तो पति में हो जाए सीधे हो जाए या पति अब दोनों जना लड़ाई करे लगी तो महाभारत हो जाए हम लोगों के महाभारत हो रहा पर कभी कभी हम अपन आपूता बन कर दे ला या चल दे ला लुतु लगे को लेतु करे तू बोला तो हम कुछ बोले के तू तू, तू जारी रखा अपन टेम्पो हम जाते को लेतु करके आए और ऐसे में अगला गीत जलसा गीत आ गए रेवन गीत गजाधर अरे गीत चली खासम खास शमीरा खातिर नदानी जगरू हवन गुडलैंड मामजल जान गुडलैंड से और बबीता चमरू हेलो और है गाना चला हुआ था इस बाबुआ नहीं यूजर 43 38 158 का देर जीते रहे बाबू आशीर्वाद दे होते हुआ ओके हाँ रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पे चला था कार्यक्रम मारी है गीत और खातिर और है गीत हमें चला हुआ था इस सब संगतियारों के नाम स्वामी के साथ जुड़ल बा रविश मंडू है गीत और भाई भौजाई माता जी पिताजी खातिर साइलेंट केयर सकमा रीता मौसी रेणुका खातिर सुदेश जसवा गीत तोहर महाराज कुमारी राजमन्ना होरीलाल दीनू लोंग चिबुक राजस्थी माना खातिर मंता मानती सिंह प्रतिभा मोहबल रेल एंड रिवे जिपोस गीत हो खातिर संजीव दीनू मोताबा के निवासी वन और बहुत प्यार से उनकी सुनेलन जाए गीत हो खातिर आशा जानू कॉटेज से है गीत और नाम तोहर माता जी कुमारी शुभम दिद्यार्थी जियाजी चीजों पर सब जानू परिवार के नाम तो चलो एक साथ सुने है गीतवा गीता गजाधर की गावल गीत जलसा

जलसा वा तो होते रही रात के 11 बजे हम आए ना तो खूब जलसा करी जैसा और बोली जैसा कि हमने के मन जुन है बड़ी चंचल मन है मन एगो प्रास नहीं रहे रहा है मनवा में कितना मना बात बा कबो हई बात सोचे रहा कबो हो बात सोचे रहा सोचते सोचते कबो सब कुछ भुला जरा ब्लैंक हो कि नहीं तय मन के चेला कंट्रोल में आने के नियंत्रण में करे के है मन जुन है घोड़ा लिखा भागेरा अरे घोड़ा के रस्सी तो हाथ में बात थोड़ा चला मन की कंट्रोल करके वरना है मन जो है इधर उधर के चीज में भटक जाए हो कि नहीं और अकलमंद इंसान बुद्धिमान इंसान वह जो अपन मन के अपन वश में रखेगा समझदार के इशारा काफी बा और ऐसे में सुनब जाए अगला गाना और है गीत रीता खातिर हेलो रीता हाय किशु और है गीत चाहते इस बबीता चमकू खाते जो प्यार से उनकी सुनत वन हेलो और फिर है गीत तो हमने चलावते इस आकाश चेतन के नाम आफिज वन लावेनिया सैपिया से इब्राहिम पोर्टविस से रोजिदा हाईलैंड से और है गीत चलावते इस सैंटोम SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम और है गीत चलावते इस मिसिज बंधन मिसिज ओकल मिसिज जुमादा मिसेज रघुनंदन और सब संगत यालों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल बा इस समय रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था तो गीत वाते लोग के नाम भी मच्छी मरवा हमर नाम हम तो मच्छी मारीला हाँ अभी समुंदर में जाए कि मना बा कहे कि मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जो है तो जारी बा और समुंदर में ऊँचा ऊँचा लहर उठा था और मौसम हवादार मौसम बात बोला था मितियो बोला बा लामे में नहीं जाए कि है सब मच्छी मरवा लोग जितना कहीं सुनता था अपन घर में रहिए चाहे मच्छी मरवा लोग अभी समुंदर में नहीं जाए कि कहे के ढेर बड़का बड़का बाघ उठाता एगो एंटी साइक्लोन है जेकर कारण इसे बाघ उठाता उधर समुंदर में बाघ उठाता पर यहाँ तो ठंडा कर रहा था चारों ओर लेकिन कितने रहता हूँ अच्छा रहा अभी बिफे ले लेता हूँ ऐसे रही हवा हवा पानी पानी उतना नहीं बसता पर लेता हूँ हवा हवा जस्ती रही तब तरीको जाके तो के दले रही खासकर लड़का लोग फजर के जब कॉलेज ले कुल जाते उनसे थे कोई बोने रे निकल से 5 बजे 6 बजे तब तरीको जाके अपन ने पे मैं अपन पास अपन सब ले लिया है ताकि मन से फोते से बात तब सब बल खुल जाए तो चला सुनब जाए मच्छी मरवा लोग की कहानी जय हरलाल गीत गेले वन है कि राधा शिवाला खातिर को बेटा प्रशांत कपतु बेटी शिल्पा और सब परिवार के नाम चंपा और देविका रामगतिया है गीत तुलो के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ मच्छी मरवा हमर नाम हम तो मच्छी मारीला हैया रे हैया रे हैया हैया रे टिकटॉक पर एक गीत को संगत मंगने रलन है गीत तोहरो नाम

अभी जय हरलाल की गीत सुनते ल मच्छी मरवा मर नाम और हमने जो देश में रही रास ये देशवा में हमने के पूर्वज जो है भारत के ढेर मना जगह से आ रहा लंसक कूली के रूप में या मॉरिशस में काम करे वो लोग ठग के बुला गरह ये मॉरिशस में जब पत्थर निकल जन से पत्थर के नीचे सोना मिली एक खातिर हमने के माय बाप दादा दादी चाचा चाची की पर दादा पर दादी पर नाना पर नानी आरल मॉरिशस में काम करे और हमने के पूर्वज से बुलंद कर रहा कि मॉरिशस जो है बहुत ही प्यारा देश है और

माथे के नीचे सोना ही सोना बा और हमने जाने से कौन दुख साइलेंस हमने के पूर्वजों के यहाँ पर या के सदार लोग कैसे मारे होंगे लोग कैसे लोग के फौज से मारे मार मार के काम करें तो फजी से चांदे बेचारा लोग काम करते लन सर गुरु मॉरिशस में और क्या करवा उस जमाने में इसे रह भैया आजकल के जमाने कोई फौज से मरवा तो वो थोड़ा फौज से धरा देनी मन से टिट फॉर टाट

से है फौज से मारा था रंसलों के काम कराए खातिर ऐसे में सुनम जग लगी किशोर खिमिया की आवाज में हाथों में हाथ है कि चलावते इस वी ऑफ फैमिली के नाम प्रिंसेस दृष्टि केविन वेलवेट है गीत और नाम और साथ में सब लक्ष्मण परिवार खातिर और तो और माताजी खातिर जन भी बर्तन मान जाते वन और केविन वेलवेट है गीत और नाम थोड़ा सब परिवार के नाम यश बंधन हेलो है गीत और नाम कृष्णा जीता हम ठीक हैं भैया तो कैसे हो है गीत और नाम विकास राम लिखा भी साथ देव थवन जब कृष्णा जीता भरा जोर नाचता मिल गए संगे संगे तब कृष्णा जीता है गीतवा खासम खास तो और खातिर हाथों में हाथ चला हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ जा

संगे संगे हाथों में हाथ डाल के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ जाओ और हमने पर मंजिल पाओ जा जरूर। रात के 9:56 हुआ था। दूसरा तो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो है लाइव एमबीसी मौका से मिलकर प्रसारण चलता भोजपुरी तरह का कार्यक्रम। और जब कोनो काम में तो हाथ डाल दे रहे हो संगत यार हो तो काम के चला हर हाल में पूरा करे के दिखवाजी नहीं हो या कब कब दिखवाजी हो जाए सक कमवा कब कठिन रहेला ढेर जिप्सिल रहेला पर का कर परेला कमवा करे के ना दिखवाजी नहीं हो के जैसे हम बोलत हैं जब कमवा जो कमवा चाह पूरा करे के अधूरा काम नहीं छोड़िया जा ठीक बा। और बेशक कुआस थोड़ा पैशंस के साथ कमवा पूरा करके शायद थोड़ा सुन समय लगी या ज़्यादा समय लगी पर काम के चेला जो उन काम में हाथ दिले हो वो काम के चेला पूरा करके रखेगी। ऐसा में सुनम अगला गाना जल साबा अंजू की तो गई वो ना कि चलाओ ऐसा ये और की ओर से सब रामबरन परिवार के नाम अमिता गणेश पीतों सेवन सुदेवी वाकवा सेवन दीदी ललिता कुशल चाचात्मा राम कृष्णी कृषय कृष्णी लक्षता और सब रामरतन परिवार के नाम है कि चली जलसा बा चला जलसा करे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10:03 हुआ था। तू सुन तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन भोजपुरी का प्रोग्राम और जय प्रताप सिंह सितारू के साथ रात के 11 बजे ले और संगतिया लोग बोईरासा की तकदीर में जो निखल बा वही होला। तकदीर के आगे इंसान बेबस बा लाचार बा। ढेर कोई की तकदीर में सुखी सुख रहेला, ढेर कोई की तकदीर में दुखी दुख। पर कोई की तकदीर में पहले दुख तो बाद में सुख, पहले सुख तो बाद में दुख, ये सब चलते रहेला। तो सच्चे के जो तकदीर जो है सच्चे के है एग्जिस्ट है तकदीर के बाद। अगर तकदीर में लिखल बा तो डॉक्टर बनबा तो डॉक्टर बनबा, अध्यापक लिखल बा हमें की तकदीर में रहल अध्यापक बने के और रेडियो स्पीकर बने के, तो देखा भी रेडियो में ही सर और लिखोल में भी काम कही रह सर। तो ये सब तकदीर की बात है पर हम एगो बात मानी रहा तकदीर एगो बात है हाँ पर चहला मेहनत वो करे के। अब मेहनत लगन मेहनत परिश्रम नहीं कर बस सब कुछ तकदीर के हाथ में डाली बता कैसे हुई। एगो एग्जाम जो होते हैं उदाहरण जो होते हैं बिले क्या लोग एग्जाम करिए सर खादनेफ के फोम सैंक एच एस सी के। अगर मेहनत और लगन से अगर रिविजन नहीं करिए सर तो पास हो सर नहीं ना। अब बोलिए सर आ यो मुनफिनी फेल दमो देश ना देश में फेल हो कि नहीं रहल तू फेल होइला अपन कारण से। और खासकर जो है क्या लोग दुबले कर रहता फोम सैंक फोम फाइव एच एस सी तो सावधान रहिए कहे कि एक कुछ करल एग्जाम है लेकोल माफ़ कर दे रख देश हम कुछ कर पास नहीं होता लेकोल बारह डाल दी। तो माँ बाप के पैसा ज़ाया नहीं करिए लड़का लोग जितना लड़का लोग एग्जाम से भाग दिए सर एस सी एच एस सी में। गुड लक ऑल द बेस्ट हमने की ओर से पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया एग्जाम में दूर नहीं पाया अभी सप्ताह में से एग्जाम शुरू होता। तो चला भी अगला गीत सुन जाए नहीं है सिरे और रहेगी तो आप नहीं चलाओ।

इस देवेन नदीवाला के नाम वैंकूवर कनाडा से अवन रंभा हवन स्विट्जरलैंड से अजय पूनम चिंतराम ऑस्ट्रेलिया से चंदन प्रिया मॉरिशस में सलोनी माँ इंदिरा चिंतराम सब चिंतराम परिवार के नाम और है गीत चलावत से इस सब संगतियालों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा टिकटॉक पेज पर हमने की देखा था वन सब बहुत बहुत प्यार के साथ यस ढेर मना संगतिया लोग बा ललिता चरण हेलो नमस्ते गीत तोरो नाम ललिता चरण फिर वैजंती कुमार ईशा मिस्टर मंगल सुकन अंजू एंजल नास मारियान फैंटम जान जहीना कानू हिसन नफीजा सोईफू सुनीता सिचन स्मी कैपन सारू बिंदु अकालू बबीता नजीर खान ममल आसियान चोईचू आश आशना नितिन गंगाराम ललिता चरण जी हाँ और गीत मांगले वन सब चरण परिवार के नाम जरूर नितिन गंगाराम हेलो नितिन भाई कैसे हो वनिसा वनिसा भी एम के साथ देवत होन फिर अक्षय यवनवा हाय गीत होरो खाते नितिन गंगाराम बहुत प्यार से उनके साथ जुड़ा रवन और प्रोग्राम के लाइव कराते वन शेयर कराते वन सुभाष मोती हेलो है गीत थोरो नाम फिर अक्षय यनवा हाय गीत होरो खाते चलाते नया सीरीज चले एक साथ सुनम चाहूँ

बहुत दुख की बात है कि दिखिरा साज का ढेर जिनेस लोग लाडो ग्रसिमिक सेंटिचिक में अपन जिंदगी पर बात करा तो वंस ये सब बुरा चीज है एक को थोड़ा लट लग जाए सब के ता ये लट का बुने छुटे ला खास कर दिखिरा से नौजवान लोग ये सब में पर रह रहन सा ता हमने के काम समझाए कि कभी भी सब विष में नहीं पड़िया जैसे लाडो का सेंटिचिक का सिमिक का ये सब नए चहला है ये सब से तो हर जिंदगी बर्बाद हो जाए देखा तो हर माँ बाप कितना परिश्रम करके तो हर आप उससे रा बड़ा कर लन जा और अब तू बड़ा हो किसन काम कर बा अपनो जिंदगी बर्बाद कर तो अपन परिवार की भी जिंदगी बर्बाद कर तो ठीक बा तो ऐसा काम नहीं चहला करे के ठीक बा जो प्लास में सब घ्रीमास कर ऐसा पीते कर प्लास में गुस्पो करिए सा जैसे स्विमिंग बा साइकिलिंग बा मॉर्निंग वॉक बा मेडिटेशन रेकी योगा पूजा पाठ सत्संग ये सब करिए सब पहले लाथोक साइंटिफिक में सब में नहीं पड़े कि भैया नितिन गंगाराम बोला तो ओ बलमा के गाना शहर में महल बनवा दिया ओ बलमा हाँ गीता भैया खासकर नितिन गंगाराम है गीत और खातिर स्पेशली फॉर यू प्यार से गीत हम नितोर कर चला होते गीत चली देवेन नदी वाला खातिर और बिपिन भी है गीत स

जब तू ड्राइविंग सिखाते वक्त तुरंत से ना खुद लाउड भी अच्छी तरह से जाने के आजकल सड़क पर ढेर जानलेवा दुर्घटना हुआ था और ढेर कोई बन जान गंवा दे हुआ था कोनो कोनो ड्राइवर लापरवाह कोनो कोनो पीते हैं लोग लापरवाह सब कोई के चला खुद लाउड जाने के कह के रास्ता इस्तेमाल गलत होता हाँ कि नहीं तो ये कहती है बैरा सक की छाना सीखे जाए कि निमन से ऑटो व्हीकल ड्राइविंग स्कूल जाइए अच्छी तरह से सीख ले लाइसेंस मिल जाए तब ड्राइव करिए नहीं कि बिना लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करते हुआ और जाके कोई से धक्का का मार दिला कोई की जान नहीं ले सब कोई की जान बहुत प्यारा है और जानने चला इसे अनजान में जान गंवाए की अगला गाना गिरीश रूपचंद की आवाज़ है सुंदर परी और हैगी तो आपने चला अब सब संगत्यारों के नाम जो हमने सुना था रेडियो मॉर्चर्स रेडियो मनोरंजन पर और फिर हैगी चली ज्ञान और चित्रा खातिर ज्ञान और चित्रा विश्राम रहेलन मौदाल बे बहुत बहुत प्यार के साथ गीतों का नाम इंदिरा लाउतन गीत हर खातिर अनिता फिकॉन्फ्लैक्स से अनिता लाल जी मौदाल बे से सभी तो परिवार के नाम एक गीत चली प्रेमिला काचबोन से शोभा पॉम्प्रेमू से हवंजा और बेशक है गीत आपने चलावते उस सब संगतिया के नाम जो अभी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे वंजा और हमने के साथ देवधवन राजमन्ना है गीत तो हर खाते सब मन्ना परिवार के नाम और है गीत आपने चलावते उस सब संगतिया के नाम जो नाइट शिफ्ट करके भी घर लौट रहता या भी घर से निकल जाते वन सर नाइट शिफ्ट करे जहाँ कहाँ भी काम हुआ था सब के बल्ब सब बोंक वाज हमने के प्यार हमने के आशीर्वाद तो लोग के साथ बा और पार्वती राम रामदाव है गीत तो और नाम है गीत आपने चलावते इस बिंदिया के नाम बिंदिया के घरोला कुद्दू को बेटा राकेश रामचंद हवन प्लान मायो से डॉक्टर राकेश रामचंद है गीत और खाते तो और दुको बेटा तो और पत्नी अब सब रामचंद परिवार के नाम सुंदर परी चले सुनेंगी तो

मारता ली मार मारता ली मार और पूजा पाठ कर ला अच्छा बात है पर कोई के निंदा नहीं करिया कोई के बुरा नहीं बोलिया कोई पर इधर-उधर की बात नहीं करिया जन व्यक्ति इधर की बात उधर कर रहा और दूसर के बारे में बुरा बोलेला वो सबसे बड़ा पापी है तई निंदा नहीं करिया कोई के

तो अपन जिंदगी अपन तरीका से जिए पर जे कौन ची करता कोई के भी नहीं करिया सबको अपन जिंदगी अपन तरीका से जिएला और धर के बात धर कर बात तो थोड़ा पाप लगी तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलिया बस अच्छा अच्छा बोली बोलिया और अच्छा संगत करिया अच्छा लोगों के साथ आइया रात के 10:50 होता है तो सुबह भोजपुरी दर का रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे अगला गीत किसी के बारे में बुरा ना सोचा रतन निहाल हवन गाँव बेस

फिर पत्नी करुणा और सब निहाल परिवार के नाम और आगे चली गोबिन परिवार के नाम गोबिन हवानी ग्रुप से हेलो मिस्टर मिसेस गोबिन आगे तो हर नाम मिस्टर बालू खुशबल से और मिस्टर बालू मिसेस बालू आगे तो लोग के नाम भी और है गाना हम चलाते इस अनिता अनिता जी के नाम अनिता पान चुकी और सबका घरोला और सब परिवार के नाम और अजय फैमिली के सब सदस्य के नाम जो नए बखत में की रात की सुनता रेडियो मॉर्चस रेडियो मनोरंजन पर किसे के बारे में बुरा ना बोलिया सुखदेव राम खेलावन की आवाज़ में

थोड़ा छोर अब जा रात के 11 बजे सुन मेरा सुनहरे पल प्रोग्राम नीतू चा के साथ और रात के 12 बजे से कल फजीत के 5 बजे सुन बचा नॉनस्टॉप फिल्म सॉन्ग सामने की दौरा की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे यही चैनल पर रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर भी तो जितना कोई हमके टिकटॉक पेज पर देख लक हमने के रेडियो पर सुन ला और फोन कर ला SMS कर ला पचन दीजा भोजपुर गीत मांगना सबको की बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि लव यू ऑल और जी प्रताप सिंह सितारू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते शुभ रात्रि बाय बाय नमस्ते

दुनिया के भागदौड़ में आदमी भागते रहेगा कभी इधर भागेला कभी उधर भागेला भागते भागते हमने जैसे प्रोग्राम के अंत तक चंद्रदेव जुबोदन के गवल गीत भागते रहेला आदमी है गीत के संगे हमने

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओ, जी हाँ, एक बार फिर सबका स्वागत है और नीतू शाह आपके समक्ष। तो सुनहरे पल कार्यक्रम में चलिए हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे संगीतकार जिनका पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। कौन है वो? पहला गाना सुनेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा।

जी हाँ श्रोताओ, आज हम बात करने वाले हैं राजेश रोशन, जो भारतीय फिल्म संगीत के उन महान संगीतकारों में से एक है जिन्होंने अपनी मधुर धुनों, भावपूर्ण रचनाओं और अलग पहचान वाली संगीत शैली से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाया। उनका नाम बॉलीवुड

के स्वर्णीय युग से लेकर आधुनिक दौर तक सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने रोमांटिक गीतों, भक्ति संगीत, दर्द भरी रचनाओं, उत्साह भरे गाने और शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त धुनों को अपने अंदाज में पेश किया। उनका संगीत सरल होते हुए भी गहराई से भरा होता है। इसी वजह से उनके कई गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में जिंदा है।

जैसे कि हमने कहा राजेश रोशन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत का माहौल पहले से ही मौजूद था। वे प्रसिद्ध संगीतकार रोशन लाल नागरथ के पुत्र हैं।

के बड़े भाई राकेश रोशन हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक, अभिनेता और निर्माता रहे हैं। इस पारिवारिक माहौल ने राजेश रोशन के अंदर बचपन से ही संगीत के प्रति गहरी रुचि पैदा की। उन्होंने संगीत की शिक्षा गंभीरता से प्राप्त की और अपनी कला को लगातार निखारा।

राजेश रोशन ने अपने पिता से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने कभी भी केवल पारिवारिक विरासत पर निर्भर रहने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी अलग संगीतिक पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकधुन, पाश्चात्य संगीत, जैज, डिस्को और रोमांटिक मेलोडी का सुंदर संगम देखने को मिलता है। वे धुन को फिल्म की कहानी, पात्राओं की भावनाओं और दृश्य के माहौल के अनुसार रचने में विश्वास रखते थे।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम

राजेश रोशन ने हिंदी फिल्म जगत में अपने संगीतकार के रूप में करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की। उनकी प्रारंभिक फिल्मों में ही उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई देने लगी थी। फिल्म कुंवारा बाप और जूली ने उन्हें पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से फिल्म जूली के गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए। इस फिल्म के मधुर संगीत ने राजेश रोशन को एक प्रतिभाशाली और संभावनाशील संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म जूली का संगीत उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस फिल्म के गीतों में रोमांटिक भावना, मधुर ताल और याद रह जाने वाली धुनों का सुंदर प्रयोग था। उनके संगीत में न तो अनावश्यक जटिलता थी और न ही भावनाओं की कमी। उन्होंने आम श्रोता के दिल तक पहुंचाने वाली धुनों को प्राथमिकता दी। इसी वजह से उनके गीत चाहे रेडियो हो, कैसेट हो और बाद में टीवी पर भी बहुत पसंद किए गए।

राजेश रोशन की संगीत शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मेलोडी है। उनकी धुनों में एक प्राकृतिक मिठास होती है जो पहली बार सुनने पर ही मन को छू लेती है। वे गीत के मुखड़े को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे श्रोता तुरंत गीत से जुड़ जाते हैं। अंतरों में तो वे भावनाओं को धीरे धीरे विकसित करते और संगीत को एक सुंदर प्रवाह देते हैं। उनके रोमांटिक गीतों में कोमलता, मधुरता और भावनाओं की सच्चाई मिलती है। उन्होंने प्रेम को केवल उत्साह या आकर्षण के रूप में नहीं बल्कि संवेदनशील अनुभव के रूप में भी पेश किया। उनके कई गीत विरह, इंतजार, यादों और मिलन की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। उनके धुनों में अक्सर पियानो, वायलिन, फ्लूट, गिटार और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रभावशाली उपयोग सुनाई देता है।

श्रोताओं, राजेश रोशन ने अलग अलग प्रकार के गीत रचने में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने रोमांटिक गीतों के साथ साथ कवाली, दर्द भरे गीत, डांस नंबर्स और उत्सव के गीत भी बनाए। उनके रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार संगीत का रंग बदलता हुआ नजर आता है। यही उनकी कला की विशेष पहचान रही। उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, उनका भांजा और कई अन्य बड़े कलाकारों की फिल्मों के लिए संगीत दिया। उनके गीतों को किशोर कुमार, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी, मुकेश, सुरेश वादकर, उदित नारायण 90s में, कुमार सानू, अलका याग्निक, अभिजीत 2000 में, सोनू निगम और अन्य प्रसिद्ध गायकों ने भी आवाज दी। उनकी संगीत रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे राग, सुर और ताल की बुनियादी समझ को लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ जोड़ने में सक्षम रहे। उन्होंने शास्त्रीय तत्वों को इतनी सरलता से प्रयोग किया कि आम श्रोता भी उन गीतों से आसानी से जुड़ सका। उनके गीतों में कठिन शास्त्रीय प्रदर्शन के बजाय मधुर और सुगम रूप को प्राथमिकता दी गई। राजेश रोशन की एक और विशेषता उनका पाश्चात्य संगीत के प्रति खुला दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने गिटार, कीबोर्ड, ड्रम बीट्स, सिंथेसाइजर और ऑर्केस्ट्रेशन का प्रयोग किया, लेकिन उनकी धुनों की भारतीय पहचान कभी कम नहीं हुई। वे नए संगीतिक प्रयोजन को अपनाते रहे, परंतु गीत की भावना और मेलोडी को सबसे ऊपर रखते रहे। 1980s और 1990s के दशक में राजेश रोशन ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए संगीत दिया। इस दौर में हिंदी फिल्म संगीत में तेजी से बदलाव आ रहा था। डिस्को, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और नए रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने इन बदलावों को समझा और अपनी रचनाओं में समय के अनुसार नए प्रयोग किए। फिर भी उनका संगीत अपनी मधुर और भावपूर्ण पहचान से जुड़ा रहा।

करियर का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चरण राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्मों का साथ जुड़ा रहा। दोनों भाइयों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई लोकप्रिय संगीतमय फिल्में दी। दोनों भाइयों के बीच परस्पर समझ और रचनात्मक समन्वय बहुत गहरा था। राकेश रोशन कहानी और दृश्य की जरूरत समझते थे, जबकि राजेश रोशन उन भावनाओं को धुन और संगीत के माध्यम से प्रभावशाली रूप देते थे। राजेश रोशन के संगीत में पारिवारिक भावनाओं का भी विशेष स्थान रहा है। श्रोताओं, उनके कई गीत माँ पिता भाई बहन प्रेम और दोस्ती जैसे संबंधों की गहराई को व्यक्त करती हैं। वे जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में गीत केवल कहानी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि दर्शकों के व्यक्तित्व अनुभवों से भी जुड़ा होता है। इसी वजह से उनके गीत लोगों की यादों, शादियों, उत्सवों और व्यक्तिगत पलों का हिस्सा बन गए। राजेश रोशन का करियर हमें ये सिखाता है कि संगीत में सफलता के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ भावना, समय की समझ, श्रोताओं की पसंद और कहानी के प्रति संवेदनशीलता भी जरूरी होता है। उन्होंने अपने लंबे करियर में बदलते समय के साथ खुद को ढलने की क्षमता दिखाई, लेकिन अपनी मूल संगीतिक पहचान को कभी नहीं छोड़ा। आज भी जब उनका कोई पुराना गाना बजता है तो श्रोता अपने बीते हुए पलों, पुरानी यादों और भावनाओं से जुड़ जाते हैं। यही एक महान संगीतकार की असली पहचान होती है। उसका संगीत समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि हर नए दौर में नए अर्थ के साथ सुना जाता है। राजेश रोशन का योगदान हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। उनकी मधुर धुन, सरल लेकिन गहरे संगीत, गायकों के साथ उनके रचनात्मक समन्वय और बदलते समय के अनुसार नए प्रयोगों ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रमुख संगीतकारों की पंक्ति में स्थान दिया है। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत जरूर बना रहेगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ